0: उसी मोड़ को पकड़ते हुए हम भी चले आए हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 5:05 हो रहे हैं. Wishing you all a lovely, very good morning, my dear listeners. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. आज मौसम बेमान है. हाँ, कल से बारिश शुरू हुई आपके यहाँ भी, और आज तो मंडे का दिन है, 17 अगस्त. बैक टू स्कूल हमारे जितने भी बच्चे, ओहो, उनको जगाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन क्या करें, ये जो टर्म है एग्जैक्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीरियस है. सो बच्चे लोग जाग जाओ, गेट अप, इट्स टाइम फॉर टू स्कूल. एंड बस मम्मी पापा आप ही जाग गए हैं, एवरी वन, क्योंकि अर्ली राइजेस जब जागते हैं तो बस मन खुश हो जाता है, दिमाग भी शांत रहता है. सो आपके दिल को सहलाने के लिए नीतू आपके साथ सुबह के 7 बजे तक, wherever you might be. एक प्यारा सा मैसेज अपनों के नाम, किसी को गुड मॉर्निंग या फिर किसी को हैप्पी बर्थडे, बस किसी के चेहरे पर स्माइल लाना चाहते हैं, then why not? सैकात नफ नफ दूस नफ कात 5499 1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार है.

As usual, Jyoti, जाग गई है सुबह सुबह फ्रॉम शतुबिनागस आशनी के नाम रेखा सुरेखा एंड माधव परिवार हर हर महादेव आपको भासुरज शर्मा सजादा सब परिवार खयोली से अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी धीरज आयुष विदिशा साथ में अश्विन ज्योति अरविक हरक का परिवार मोदाल से शमी जी के गाने आपको बहुत ही अच्छे लगे थैंक यू सो मच आप है कौन शीला जी लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर टोनी एंड आपो फ्रॉम रोजबुआ आज आप कहते हैं कि व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो बट इफ यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू दैट्स ट्रू ना जो हम जानते हैं जो ऑलरेडी सुने हुए हैं वही सब बोलते हैं लेकिन अगर आप सुनोगे डेफिनेटली तो कुछ ना कुछ आप नया सीखते हो बीट छोटे लोगों से बड़े लोगों से जो भी हो आप अपनी जिंदगी को अपनी मॉर्निंग को खुशगवार बनाते चले अ वेरी गुड मॉर्निंग आप आज फैमिली फ्रॉम रोजबुआ हर हर महादेव टू माई लवली नीस किमी एंड कीर्ति भाई संजीव भगन और शिवाला जा रहे हैं तो हर हर महादेव आपको भी सुया बिहारी फ्रॉम कोंगुमा एंड गुड स्टार्ट हैप्पी स्कूल आप कह रही हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल आप भी ललित एंड जीतन फैमिली टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स 5499-1294 पर भूलिएगा मत हाँ ये आपका मैजिकल नंबर है प्यार भरा नमस्कार हर हर महादेव आपको भी अंजनी जी

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: डेफिनेटली ये बात ही आपको बुला रही है अम्बो वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती और आपके मेजबान आपके होस्ट आपके नीतू आपके साथ 5:24 गोइंग टू वर्क बॉन कुराज बस अपना ख्याल रखिएगा हाँ एंड प्लीज स्कूल हो काम हो जहाँ भी जाना हो जाओ आप लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट मिस मत कीजिएगा स्किप मत कीजिएगा और आज दोपहरा दिन है बच्चों के लिए फर्स्ट

term. So have a great day ahead. A very good morning. Namaste aapko Dhaneshwar ji. Patni Sunita, Rekha, Sanjeev, Nisha, Davidus Parivar, have a great day ahead. Yahan par kehte hai pyari Neetu, good morning, har har Mahadev. Premila ji, aapko liye bhi friend Deepa Pai se. Aur gaane aapko achhe lag rahe hai, thank you. So next gaana definitely aapke pati Ranjit, sab parivar ke naam. A very good morning aapko bhi. Yahan par Dutika, pyari si Dutika Ghibya de Kreol se. Raghu Jana Parivar aur Radio Musti team ke liye. Thank you, my dear. Good morning, kaise Abdul Sahara Banu? कहाँ पर है बोको हाश एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आज रिसेप्शन डे है यानी कि थर्ड टर्म स्टार्टिंग बोको हाश सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए यस स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर्स सब के लिए थर्ड टर्म एकदम ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है सो बस सीरियस होके आगे बढ़ते चले एंड मेहनत का फल डेफिनेटली मीठा ही होगा 5499 1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बस कई लोग इस समय भी नाइट ड्यूटी पर हैं, थोड़ी देर में घर चले जाएंगे और काफ़ी लोग जो हैं बस अपनी मॉर्निंग की शुरुआत भी कर चुके हैं और अपने दिनचर्या शुरू भी कर देंगे. अ बिग थैंक यू टू यू ऑल. सरोज राजन मोनिका, बी सेफ एवरीवन एंड राइज एंड शाइन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू टू. अनुशाहरी रामप्लैन देगौश से पापा ससन माँ प्रेमिला संजू रोशनी परी है हेमकेश आपके पूरे परिवार के लिए. बस 5499 1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस आपके अपनों के नाम और इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे आपका हॉरोस्कोप.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो चलिए डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे आपका दिन कैसा रहेगा।
2: एरीज मेष राशि।
1: वेल आज आत्मविश्वास और कार्यशैली में यानी कि उसमें निखार आप देख पाएंगे और बढ़ेंगे भी। नौकरी में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता जो है उसकी सराहना हो सकती है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा एंड लव रिलेशनशिप्स में मधुरता आएगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: सुख सुविधाओं और पारिवारिक जीवन का असर रहेगा। घर परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में आपके लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला ना लें।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: साहस और पराक्रम बढ़ने वाला है, मेहनत करते रहे। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता से रुके हुए काम आगे बढ़ सकती हैं। भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, साथ में बिजनेस में संपर्कों से फायदा हो सकता है। हालांकि बातचीत के दौरान अहंकार ईगो से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: धन और परिवार से जुड़े मामलों को आप प्रभावित कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है और खर्च करते समय प्लीज बजट का ध्यान रखें।
2: लियो सिंह राशि।
1: ऑलराइट, आपके लिए कहा जाता है कि ये दिन आपके लिए विशेष रहने वाला है। कैसे? आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। नए जिम्मेदारी या पद मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार में भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। वेल पर्सनल लाइफ में अपने व्यवहार में विनम्रता वो बस बनाए रखें।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: खर्च और विदेश से जुड़े मामलों को सक्रिय आप कर सकते हैं। नौकरी या व्यापार से उसके सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, दैट्स व्हाई आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में आप समय देना आपको लाभकारी होगा, यानी कि आपके फायदे भी होंगे।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: वेल, आपके लिए कहा जाता है कि सामाजिक संपर्कों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा। नौकरी में आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। पुराने दोस्त या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कोई काम बन सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: वैसे आपके कर्म आप पर भारी पड़ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, जिससे करियर में सक्रियता भी बढ़ सकती है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। बॉस या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। व्यापारियों को नई डील मिल सकती है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।
2: सजिटेरियस धनुराशि।
1: भाग्य को आप मजबूत करने वाले हैं और आपका दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। लंबी दूरी की यात्रा का या विदेश से जुड़े काम में लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट्स,

0: आपके लिए भी समय काफी अनुकूल है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आपके लिए परिवर्तन और साझेदारी से जुड़े विषयों को सक्रिय करना काफी अच्छा रहेगा। व्यापार में पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। फाइनेंशियल मामलों में जोखिम लेने से बचे। दाम्पत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ने दें और बातचीत से समाधान डेफिनेटली आपको मिलेंगे।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: यहाँ पर आपके लिए कहा जाता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ कोई नई डील योजना बन सकती है। नौकरी में लगे लोगों के साथ, जी हाँ, नौकरी में लोगों के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा और रिश्तों में अहंकार से बचे और सामने वाले की बात भी आप ध्यान से सुने।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आपके लिए कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों का अवसर आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, उनका असर भी पड़ सकता है। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पुराने विवाद खत्म करने का अवसर मिलेगा। दिनचर्या व्यवस्थित रखें और काम से बीच उसके बीच आराम के लिए समय डेफिनेटली निकालें। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: सामना करते हुए आगे बढ़ते चले।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Masti.
0: Birthday time, so let me wish a happy birthday to you all, जिनका आज birthday है। कोई बात नहीं, नाम नहीं भेजा लेकिन आपका बर्थडे है, तो हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बेस्ट विशेस आपके लिए भी। बेटा है दीप चंदी, आप सानू नाम से जाने जाते हैं, तो सानू भाई बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार की तरफ से, खास तौर से आपकी वाइफ काविश का और आपके पिताजी हैं भाई चंदी, यानी कि हम उनको भाई चंदी कहते हैं, दयानंद, साथ में है आपकी मामा पूनम, सभी चंदी परिवार की तरफ से एंड ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: 6 baje hai. Sundar Sankshipt Samachar aapse Aditi. Namaskar.
8: Namaskar Nitusha, shrotaon ko bhi namaskar. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल दोपहर दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे, जहां वे सादेक के राष्ट्र सरकारी नेताओं की 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। सादेक की 16 सदस्य देशों के अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के समक्ष खड़ी चुनौतियों का बेहतर सामना करने के लिए इलाकाई सहयोग को नई गति देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मामी गावातोमांगा मामले में आज एक नई कानूनी कार्रवाई शुरू हो रही है। मेडागास्कर के ये व्यवसायी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले में आज और कल होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मामी गावातोमांगा को अक्टूबर 2025 से मेलरोज के हाई सिक्योरिटी कैदखाने में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हंगेरी में एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के उलट जाने से 12 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस चालक को नींद आ जाने के कारण उसने नियंत्रण खो दिया था और ये हादसा पेश आया। उसे हिरासत में लिया गया है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके को प्रभावित कर रहा अस्थिरता का जोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, जबकि पूर्व से आ रहे कुछ बादल रात के दौरान हमारे इलाके से गुजरेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह और दोपहर बाद रह रहकर बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व और ऊंचाइयों पर। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश की संभावनाएं हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:30 पर सूर्योदय, शाम को 5:57 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 बजे मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आपको ले चली है प्यार की वादियों में, गीतों की वादियों में, तो चली हमारे हम सफर बढ़ने के लिए दिल से आपको थैंक यू सो मच। 6:10 वेलकम बाप। काफी मैसेजेस हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: It's a very good morning to you. रात के हम सफर, ये गाना आपको अच्छा लगा? ओ आपका मैसेज अभी आया अमृता पुएतो साबल से, थैंक यू सो मच। और आज अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है कौन? 28 years of togetherness आपको माधवी एंड हबी विनोद अबलाल माची बोधा परिवार की तरफ से एंड ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनम भोला, मामा के लिए आपकी लवली सीमा, अश्विनी, अविशा, वंदना एंड प्रिया, ऑफ कोर्स आपके पूरे परिवार, छोगालाल परिवार, आप है फ्रॉम गुडलैंड्स, नमस्कार जी। नेक्स्ट गाना गुज आउट टू होम, बर्थडे विशेज टू सचिन बीचू ऑफ पुत्र दो विलास, काजल, श्रवण, शावनी, आहान, रविश, प्रिशा, लवशा, डियर वंस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नीतू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक वैसे हैं? कौन कविता जी? ओके, तो चलिए पूरे परिवार के नाम एंड डेफिनेटली आपके सभी डियर वंस के लिए भी। ओह इतना लंबा मैसेज। ओ नीतू ये गाना आपने मेरे बेटे के लिए करती थी। ओके आज बेटा 22 इयर्स के हो गए हैं। ओके मैं समझ गई। सो उनको हैप्पी बर्थडे और वो पढ़ाई कर रही हैं कनाडा में, आंखों से दूर लेकिन दिल के करीब है ना। और बस जैसे भी हैं खुश रहें और आप सबका आशीर्वाद डेफिनेटली उनके साथ है। रेडियो मस्ती टीम गुड मॉर्निंग, नमस्कार। किशन रघुनाथ फ्रॉम सूरीनाम, नेक्स्ट ट्रैक गोज़ आउट टू माय वाइफ माला, बेटी है जिया, साथ में रिया एंड होम रघुनाथ परिवार ऑफ कोर्स। नेक्स्ट गाना किन के नाम? मेरे भाई विक्रम, बहन हेमलता, स्वीटी, आप है भारती पोएतो पिमा के लिए से है, पोएतो पिमा से है एंड टू रेडियो मस्ती टीम थैंक यू सो मच। सुनीता दर्शन, दर्शन परिवार, सोहराय पा मिसल, सुनक सिंह, बुधू सिबालक फैमिलीज है नोथ्रदाम से एंड यही गाना आपके लिए प्यारी सी रेखा, बेटा अंश, सब परिवार पोवोजो से एंड 5499-1294 पर आपका भी स्वागत है। हबी रवि, बेटी दूषिका, त्वेशा एंड टू यू टू वीना एंड गंगा परिवार मोहताबा से।

अब जब पता चल गया कि मोहब्बत क्या चीज है तो बस मोहब्बत करते चले और प्यार बांटते चले, है ना। गुड मॉर्निंग पारुषी परिधि एंड टोल द बचाज जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, गरप गरप टाइम टू गेट गोइंग। एंड यहाँ पर विमला जी कैसी हैं जगदयाल परिवार के नाम, थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए। आप कहती है मेमोरीज आर मोर लॉयल देन पीपल बिकॉज पीपल लीव बट देयर मेमोरीज लास्ट फॉरएवर। बातें भूल जाते हैं पर यादें हमेशा याद आती हैं। तो चलिए 90s की यादों को हम यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं।

0: बारिश हो रही है आपके यहाँ या फिर रुक गई है? Do let me know. Sec का नफ नफ दूस नफ काट पर.
1: 3, 2, 1, let's start the fun.

और इस मौसम का जादू, गीतों का जादू, वो तो बरकरार रहेगा, कभी हम कभी कोई और। 6:25 और 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट।

0: है राहुल, तुम नहीं समझोगे। लड़की बड़ी अनजानी
1: है। रेडियो मस्ती ऑल द वे।
2: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
2: अभी ठीक सारे ही बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल दोपहर दक्षिण

0: अफ्रीका के दर्बन शहर पहुंचे, जहां वे सादेक के राष्ट्र और सरकारी नेताओं के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। मामी गवा तुमांगा मामले में आज एक नई कानूनी कार्रवाई शुरू हो रही है। मडागास्कर के ये व्यवसायी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे हैं। आज के स्कूली प्रवेश से तीसरा टर्म शुरू हो रहा है। इसके लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। आज से स्कूल में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर बदलाव लाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हंगेरी में एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं के ले जा रही एक बस के उलटने से कम 12 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रावुलाम कल दोपहर दक्षिण अफ्रीका के दर्बन शहर पहुंचे, जहां वे सादेक के राष्ट्र और सरकारी नेताओं के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। सादेक के 16 सदस्य देशों के अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के समक्ष खड़ी चुनौतियों का बेहतर सामना करने के लिए इलाकाई सहयोग को नई गति देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब्दुल बोला की करुणा लालू।
1: डर्बन के किंगशाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम का आधिकारिक और प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग की उपमंत्री ठंडी मोराका भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान राष्ट्र नेताओं के लिए निर्धारित औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। सादेक का 46वां शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, सोमवार को आधिकारिक रूप से शुरू होगा। क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय एकीकरण में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र में बदलाव तथा महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ कई मुलाकातें भी होंगी। इन बैठकों में दक्षिण अफ्रीका के सामने मौजूद साझा चुनौतियों के साथ साथ सादेक के भीतर मॉरिशस की प्राथमिकताओं को भी सामने रखने का अवसर मिलेगा।
0: मामी ग्वातेमाला मामले में आज एक नई कानूनी कार्यवाही शुरू हो रही है। मडागास्कर के ये व्यवसायी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले में आज और कल होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मामी ग्वातेमाला को अक्टूबर 2025 से मेलरोज के हाई सिक्योरिटी कैदखाने में रखा गया है। 24 अक्टूबर को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 56 वर्षीय इस व्यवसायी को तब गिरफ्तार किया था जब वो एक निजी क्लिनिक में भर्ती थे। उन पर 3 अस्थाई आरोप दर्ज किए गए हैं, 2 मनी लॉन्ड्रिंग के और 1 षड्यंत्र का। ये आरोप मडागास्कर और मॉरिशस के बीच कुल 7.3 बिलियन रुपए के फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़ी एफसीसी की जांच का हिस्सा है। काविता पिसाओ, करुणा लालू।
1: मामी ग्वातेमाला अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। 56 वर्षीय इस मडागास्कर के कारोबारी को 24 अक्टूबर को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने गिरफ्तार किया था। उस समय वो फिनिक्स स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती थे। उन पर फिलहाल 3 अस्थायी आरोप हैं, मनी लॉन्डरिंग के 2 और आपराधिक साजिश का 1 आरोप। ये मामला एफसीसी की उस जांच से जुड़ा है जिसमें मडागास्कर और मॉरिशस के बीच 7.3 बिलियन रुपए के वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है। उनकी संपत्तियों और उनकी कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी कई कंपनियों की संपत्तियों पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को मामी ग्वातेमाला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध वकील को मॉरिशस बुलाया। मॉरिशन वकीलों के साथ एक्टो बेनोदिनी ने एफसीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मामी ग्वातेमाला की जमानत के संबंध में पहली सुनवाई 30 दिसंबर 2025 को हुई, तब बेल एंड रिमांड कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुख्य रूप से फरार होने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने के खतरे को ध्यान में रखा। 30 जुलाई को मामी ग्वातेमाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

0: बेलेन रिमांड कोर्ट में पेशी दी। एफसीसी ने नई याचिका की स्वीकार्यता को लेकर अपनी प्रारंभिक आपत्ति वापस ले ली। इसके बाद अदालत के लिए अब उनकी जमानत याचिका पर गहराई से जांच करने का रास्ता साफ हो गया है।
1: और शनिवार 15 अगस्त को हवाई अड्डे पर एसएसयू की टेक्निकल यूनिट में पोस्टेड एक पुलिस अफसर को हिरासत में लिया गया। वे दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से अपनी पत्नी के साथ मॉरिशस पहुंचे थे। उनके पास से 30 ग्राम गांजा और कई अन्य अवैध सामान जब्त किए गए। उन पर ड्रग के आयात का अस्थाई आरोप दर्ज किया गया है। आज के लिए स्कूली प्रवेश से तीसरा टर्म शुरू हो रहा है। इसके लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। आज से स्कूल में छात्रों द्वारा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर बदलाव लाए जा रहे हैं। वे फ़ोन साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और कक्षा के दौरान उसे अलग रखना होगा। फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ शिक्षक की अनुमति से ही किया जा सकेगा, या तो शिक्षा से जुड़ी किसी गतिविधि के लिए या मेडिकल कारणों से। आदरणीय वाले अभ्युदय।
2: Au début, quand il vient l'école, il a besoin d'avoir ce portable dans ce sac. Mais s'il est en frein, il n'y final compte ça, il faut besoin de nez. Parce qu'il y a des enfants, pas beaucoup à challenge l'autorité, ce professeur. Parce qu'il dépend de quel contexte professeur-là.
3: जब एक छात्र स्कूल में प्रवेश करता है तो उसे अपने मोबाइल फोन को अपने बस्ते के अंदर रखना होगा। अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल करे समय या रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है तो उसे अपने मोबाइल फोन को कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को देना होगा, क्योंकि वो अधिकारी के खिलाफ नहीं जा सकेगा। इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि किस परिस्थिति में अध्यापक उस छात्र के मोबाइल फोन को कन्फिस्केट कर रही है। कन्फिस्केट किए गए मोबाइल फोन को रेक्टर के दफ्तर में रखा जाएगा और बाद में उस छात्र के माता पिता को ये मोबाइल फोन वापस किया जाएगा। शुरुआती दौर में छात्रों को तुरंत सजा नहीं दी जाएगी। सबसे पहले छात्रों को औपचारिक रूप से असेंबली में मौखिक रूप से मोबाइल फोन के इस्तेमाल न करने की सूचना और आदेश दिए जाएंगे। कॉलेज की ओर से मोबाइल फोन के प्रयोग न करने पर लिखित तौर पर एक सर्कुलर भी छात्रों को दिया जाएगा। ये जानना जरूरी है कि हम अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जा रही है। हम अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को इस बात का एहसास करना होगा कि अधिकारी किस दृष्टि से ये कदम उठा रहा है और क्यों ये नियम लागू किया जा रहा है। हाल ही में स्कूली छुट्टियों के दौरान रेक्टरों से मुलाकात हुई और इस नियम के अनुपालन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने की भी बात हुई। छात्रों के कल्याण और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है।
1: शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद के अनुसार ये कदम छात्रों के हित को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है, खासकर उन्हें कक्षा में पूरी तरह ध्यान देने में मदद देने के वास्ते और शिक्षा के लिए बेहतर माहौल स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बार फिर शिक्षा मंत्री को सुनते हैं विवरण अभ्युदय का।
2: besoin lit pour des besoins pédagogiques pour son research work pour son survey pour
3: हमने ये भी कहा है कि अगर शिक्षण व पठन कार्य यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग वर्क्स शोधपूर्ण कार्य यानी रिसर्च वर्क सर्वेक्षण या फिर किसी भी पेडागोजिकल कारण है, इसके लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी भी आपातकालीन स्थिति में मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा सकता है। हम केवल बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि मोबाइल फोन का सही तरीके से प्रयोग करें। हम जो कुछ कह रहे हैं बच्चों के हित और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख कर कह रहे हैं, ताकि वे बेहतर माहौल में अपनी पढ़ाई कर सके।
1: मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल एनी यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी थी। इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन

0: जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा। ये नियम छात्रों की मौजूदगी में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे। जहां कुछ अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने माता पिता से संपर्क कैसे कर सकेंगे। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं।
1: Faut d'abord être trop strict parce que nous quand c'est pour faire des affaires très rapide en place. Si nous je fais un peu moins strict, nous banni pendant les récréations, mais c'est vite dans classe pour faire des devoirs ça là.
2: C'est bien correct parce que les enfants de cas concentrés avec cette éducation, si téléphone portable ils font être distrait dans cette bande les titres. Mais les bon puis nous avons dit ça à l'école.
3: Moi, tous les jours, ça fait moi. Mais seulement, et à ce place que nous besoin, parce que nous finissons avec tes enfants avec servi portable. Je ne pas servir de l'esprit que moi, je servi portable. Enfin, à ce terme, pourquoi je peux servir de l'esprit plus? Ça, à l'époque-là, appartient à portable, mais nous ne pouvons arriver dans la vie sans sa portable-là.
4: D'un côté, ni bon, d'un côté, ni pas bon aussi. Quand il y a une urgence, madame malade, quand tu fais des parents, vous mettez ses autres quand c'est pas bien.
0: नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में दो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनमें विजय ताजरी शामिल हैं। पोताज एंसोरिया नामक गैर सरकारी संगठन की अध्यक्षता का कहना है कि उन पर किए गए विश्वास के लिए वे आभारी हैं। 39 साल की विजय ताजरी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता रखती हैं और उनके अनुसार वे अपनी नई जिम्मेदारियों के महत्व से पूरी तरह वाकिफ हैं। उनका कहना है कि वे NEF के अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखती हैं ताकि लाभार्थियों को बेहतर लाभ हो सके। राजमिला सीतामणि ने उनसे बात की, विस्तार अभ्युदय के साथ।
5: La National Empowerment Foundation travaille directement avec ban person, ban famille qui n'ont besoin d'accompagnement. Et
6: National Empowerment Foundation उन लोगों तथा उन परिवारों के साथ काम करता है जिनको एक समर्थन और सहयोग की जरूरत होती है। जब हम सहयोग की बात करते हैं तो वो एक मानवीय सहयोग है। मेरे लिए ये न सिर्फ एक टाइटल या पद है, अपितु समाज के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी विनम्रता के साथ हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे और बेहतर तरीके से हम अपना निस्वार्थ योगदान देंगे। लोगों को सुनना हमारी मुख्य प्राथमिकता होगी। एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी की मदद करना, बल्कि उसे उन साधनों की आपूर्ति करें जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस इंसान को खुद पर भरोसा रखने के लिए हम उनको खुद प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो एक बेहतर जिंदगी का निर्माण कर सके।
0: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। हंगेरी में एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के उलट जाने से 12 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल बताए गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस चालक को नींद आ जाने के कारण उसने नियंत्रण खो दिया और ये हादसा पेश आया, उसे हिरासत में लिया गया है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से किए गए इस साल के अब तक के सबसे भीषण हमले में कम 7 लोगों की मौत हुई है। मॉस्को को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 822 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में रशिया के एक वेयरहाउस को भारी नुकसान पहुंचा है। चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके को प्रभावित कर रहा अस्थिर जोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, जबकि उधर पूर्व से आ रहे बादल आज रात के दौरान हमारे इलाके से गुजरेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह और दोपहर बाद भी पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा।

का। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, दक्षिणी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:30 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:57 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल दोपहर दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे, जहां वे सादिक के राष्ट्र और सरकारी नेताओं के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। मामी हवा तुमंगा मामले में आज से नई सुनवाई शुरू हो रही है। मेडागास्कर के ये व्यवसायी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के समक्ष पेश होंगे और वे जमानत की मांग कर रहे हैं। आज की स्कूली प्रवेश से तीसरा टर्म शुरू हो रहा है, इसके लिए कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। आज से छात्रों को स्कूल फोन ले जाने की आवश्यकता पड़ने पर ही वे ले जा सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल को लेकर बदलाव लाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, हंगेरी में एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के उलट जाने से 12 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। फाउंटेन रोड रोशनवामी, फाउंटेन रोड रोशनवामी 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्वंती इंदर नारायण, श्रीमती विद्वंती इंदर नारायण पैदाइश नाम रघुनाथ, जो विद्वंती नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री ऋषिराज इंदर नारायण के मकान फाउंटेन रोड रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्वी हाउस पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेयर 2 PM। इबिस्क्यूस लेन कानूत में, इबिस्क्यूस लेन कानूत में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड श्रीमती माला बुधू, श्रीमती माला बुधू पैदाशी नाम चौतन, जो रोमिल नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 3:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे इनके पति श्री प्रवीण कुमार बुधू के मकान इबिस्क्यूस लेन कानूत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। रॉयल रोड लागोजानियो ग्रोव में, रॉयल रोड लागोजानियो ग्रोव में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रभावती बेचू, श्रीमती पार्वती बेचू पैदाशी नाम गंगा, जो सुनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड लागोजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रेतु रोड ग्रैंड रिट्रीट में, रेतु रोड ग्रैंड रिट्रीट में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री देवलाल रामगति, श्री देवलाल रामगति जो सोनालाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और वे डॉक्टर दुशन रामगति के पिता थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रेतु रोड गौनोथा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में, मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती हरिमती चौधरी, श्रीमती हरिमती चौधरी पैदाशी नाम बंधुआ, जो शांति नाम से

तरह जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान मिशन क्रॉस रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पाजानी मलय रोड कप मालोरमे 45 साल के 45 years old श्री धीरज गौंजू जो धीरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पिता श्री सरदानंद गौंजू के मकान पाजानी मलय रोड कपमालोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए औंसलागे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। न्यू रोड रोशनोमी 69 साल के 69 years old श्री मथुरा प्रसाद गुदौ जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती वेदवंती गुदौ के मकान न्यू रोड रोशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। रोड इक्वायोमी लियो जिम के पास 47 साल के 47 years old श्री विशाल राजकुमार जो सचिन मासो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दस बजे इनके मकान रोड इक्वायोमी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड क्लेमेंसिया में 46 साल के 46 years old श्री चंद्रदत्त पेमा जो सचिन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दस बजे इनके भाई श्री मोहन लाल पेमा के मकान रॉयल रोड क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लेमेंसिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड पे चिराफे में 65 साल के 65 years old श्रीमती अनुराधा मोरुचिया जो संगीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह सवा दस बजे इनके भाई श्री मानंद मोरुचिया के मकान रॉयल रोड पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दारुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:15 AM। त्रिभुवन नंबर तीन वाक्वा में 82 साल की 82 years old श्रीमती नीराबाई गोपाल पैदाशी नाम सकाराम जो नीरा डब्बाई नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे इनके मकान त्रिभुवन नंबर तीन वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अली भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। ऋषि दयानंद स्ट्रीट मॉर्टिनियर सुरीनाम में 79 साल के 79 years old श्री खुशीराम जदू जो दुलम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे इनके बेटे श्री विकास जादू के मकान ऋषि दयानंद स्ट्रीट मौचिनिया सोई नाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड काथ्रकोको में 65 साल के 65 years old श्री गुरुदेव रामनारायण जो चानन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती इंद्रावती रामनारायण के मकान रॉयल रोड काथ्रकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM।

0: Kalima Road, Camp des Pêcheurs, Grande Rivière, Sud-Est, Mai. Kalima Road, Camp des Pêcheurs, Grande Rivière, Sud-Est, Mai. 69 साल के 69 years old श्री हरिप्रसाद जंगली, श्री हरिप्रसाद जंगली जो राज या राजा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान कालीमा रोड कौन दे पेशर ग्रांड रिवियर सुद से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दो फ्रेयर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। 65 साल के 65 years old श्री मुनेंद्र नाथ सिंह सोहन, श्री मुनेंद्र नाथ सिंह सोहन जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे लाशा पैलौदौंत मोगापिजी त्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। सावान रोड नोवेल फ्रांस में, सावान रोड नोवेल फ्रांस में 88 साल के 88 years old श्री रामशंकर सिंह रामदीन, श्री रामशंकर सिंह रामजीन जो रोके नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजी नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। रैकेट रोड ग्रांबे में, रैकेट रोड ग्रांबे में 46 साल की 46 years old श्री विशाल भरत, श्री विशाल भरत जो विमल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके भाई श्री गासों भरत के मकान हकेत रोड ग्रांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमालोह की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11:30 AM। रॉयल रोड मेलरोज में, रॉयल रोड मेलरोज में 62 साल के 62 years old श्री राजकुमार सुमारू, श्री राजकुमार सुमारू जो विनोद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके भाई श्री, इनके बेटे श्री हाशील सुमारू के मकान रॉयल रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेलरोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM। ओडिसे बेलों में, ओडिसे बेलों में 57 साल के 57 years old श्री शांताराम साबाजी, श्री शांताराम साबाजी जो गौसों नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनके भाई रवीन साबाजी के मकान ओडिसे बेलों से उठाकर बेजिकाप के सेंट फ्रांसवा दासीज गिरजाघर ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए। सहमत है बेलों का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते, नीले नीले

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check.

0: भर के साथ बजे है
1: मॉर्निंग बीट.
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

यहाँ पर 7:05 हो रहे हैं और मनीषमा आपका साथ देने आ चुकी है। इसे आज ब्रेक, वीरिता तो कल वापस आ रही है 7 से 9, लेकिन आज हमारी जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है आप एंजॉय करिएगा जरूर, और जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। गुड मॉर्निंग।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: So tough. So tough to wake up on a Monday morning. लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो टाइम है, ये जो दिन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंस्पायरिंग हो जाते हैं. वैसे सुबह सुबह यू नो जस्ट हैव टू वेक अप इन अ वेरी गुड मूड एंड जस्ट थिंक यार एक और मौका मिला है टू सेट एवरीथिंग राइट. Go back on track. जो बीत गया सो बीत गया, उसको हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन जो आने वाला कल है हम उसको सवर सकते हैं. बेशक यहाँ पर आगटिया यो बर्थडे टाइम जो कि शुरू होगा 7:20 पर. जी हाँ, एक लकी ड्रॉ करने के बाद द वन जिन्होंने सही यू नो तरीके से रजिस्टर किया है खुद का नाम एंड द बर्थडे पर्सन का नाम. जी हाँ, या तो बर्थडे बॉय या तो बर्थडे गर्ल का ही जो नंबर है उनका नाम और उनके एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और खुद का नाम, खुद का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर दोनों भेज दीजिएगा ऑन दिस नंबर ऑन 5491294 पर. ओके, ताकि फॉर यू टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द लकी ड्रॉ और मिल जाएगा कोई विनर जो आज अपना स्पेशल डे मना रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड जीतिए लुलु हाइपर मार्केट से एक वाउचर. यस, बी द लकी विनर everyday happy birthday time. Okay, 7:20 पर हम एक surprise करने वाले हैं, तो अब बस register right now, right away, right now. बिना देर किए the first come actually will be like you know first serve also. हम एक lucky draw करेंगे and please do send us both full name, address and phone number of the person concerned. Okay, happy happy birthday goes out to each and everybody celebrating their birthday today. अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, then we'll move on with our next song is Chinnadi Chinnadi. Here we go.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon 10

0: Radio Musty.
1: जी, जैसे कि आपने सही सुना था कि 7:20 पर हम अराउंड दिस टाइम विल मेक हिज बर्थडे सरप्राइज या पर लकी ड्रॉ करने के बाद एक इंसान का नाम आया था एंड वी टॉक टू हिम ऑफ एयर. उनका नाम है दिशंत सिटिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ड्राइव कर रहे हैं. ही इज वेरी वेरी हैप्पी टू बी चोजन आफ्टर द लकी ड्रॉ. वैसे आप पूछ रहे थे कि किसने ये सरप्राइज किया है आपके लिए. बेस्ट विशेस फ्रॉम साली सुनीता पेम. जी हाँ, आप करते हैं काम योर सेल्स सुपरवाइजर एक्सेस, सो वहाँ पर आप पूरा दिन बताते हो और स्पेशल ये दिन आपने चूज किया है काम करने के लिए. तो हैव अ वंडरफुल डे एंड कंग्रेचुलेशंस. विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर. वैसे आपको मिल रहा है ये लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू दिशांत.

0: from Radio Masti.
1: साथ ही साथ टुडे इज माय मामीज बर्थडे, उनका नाम है निशिता. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आप रहते हैं ब्रिजेवा जी. हेलो जी, हैप्पी बर्थडे गुड साथ साक्षी आल्सो. हेलो, माय नेम इज अमन. Tuning to Aring to Radio Masti. Happy birthday goes out to Bhavna Tipu, jo rehti hai Priyole. Also, wo educator hai. Best wishes from Poonam, Prema, Reema, Reena, Madhavi, Priyanka, Khushi aur bhai hai Ashwin. Again, happy birthday goes out to Sakshi from Manisha. Chaliye lete ek chota sa break and be back with the best of songs.
2: RM2 Radio Musty. Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de jus de fruits Les Vergers de la Bourdonnée à 122,95 € et les 320 ml de Vaseline Body à 219,95 €. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
3: On est tous Winners!

आज कल अभी 25 मिनट हुए हैं, आप जुड़े हैं इनटू रेडियो मस्ती के साथ. हैव अ वंडरफुल डे अहेड, giving you the right vibes and good beats. Messages, dedications, आप तो जानती है 5491294 पे.

के लिए मैं ना एक वर्ड ढूंढ रही हूँ. एक्चुअली मुझे बस आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए ऑन दिस नंबर 5499-1294 पर. ओके, आई एम सर्चिंग फॉर एन ऑर्गन. They detect light, colors, shapes, movement, and distance, and send information to the brain. Okay, बस एक organ को हम ढूंढ रहे हैं. They detect light, colors, shapes, movement, and distance and send information to the brain. Bada hi aasan hai aur jeet ye 40 minutes ho jayega aapke naam agar aap sahi jawab de kis organ ko hum dhoond rahe. It's a word. You send me on 5499-1294 per with your full name and address. Okay, yahan par hum intezar kar rahe hain of course Arvind Jay ka for the latest updates of the sports world. Lekin tab tak ke liye rang ka aap enjoy kijiyega from the movie Skyfall. Here we go.

0: FM 2 Radio Musti
1: Import climatiseur ou frigidaire, nouveau règlement par Energy Efficiency Management Office, IEMO, applique pour tout ban importateur et particulier qui peut importer ban l'appareil pour vendre ou soit pour votre propre usine, bureau ou la case. Ce nouveau règlement-là assure qui ban l'appareil-là respecte ban normes l'énergie. Alors, avant de faire ou ban démos pour importer aircon ou frigidaire, assurez qu'il vous fin enregistrer comment importateur et qu'enregistrer ou l'appareil avec IEMO. La douane, pas pour autoriser ou dédouane ou cargaison, si vous pouvez un certificat IEMO. Pour plus d'informations, contactez Energy Efficiency Management Office, le 206 80 70.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
0: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
4: Here we go for the sports updates. Good morning to you, Arvind Ji.
5: Good morning, Apko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. Community Shield jeet gaya Arsenal. Ek nahi, do nahi, 3-0 se Arsenal ne Manchester City ko ron dala. City maar nahi, City ki 3 baar maar hi maar. Michael Arteta se koi atat nahi, is baar आखिरकार प्रीमियर लीग चैंपियन जो ठहरे रिकार्डो कालाफियोकी काई हावर्ट्स और मार्टिन ओडेगार्ड एक के गोल स्कोर कर पाए। मिकेल आर्टेटा ने कहा कि उसे भी विश्वास नहीं था कि उसकी टीम इस तरह से मैनचेस्टर सिटी को मसल कर पसार देगी। दूसरी ओर मैनचेस्टर सिटी के नए कोच एंजो मारेस्का को लगा टॉप फ्लाइट फुटबॉल का चस्का। हार में दर्द है पर यह केवल शुरुआत है, बस इतना कह पाया मारेस्का। कहते हैं जो कम्युनिटी शील्ड जीतता है चैंपियन नहीं बनता। 34 सीजन में 30 बार ऐसा हुआ है, पर आर्सेनल ने जिस तरह से बमबारी की और जिस तरह से सिटी की धुलाई हुई, लगता है आर्सेनल अपना टाइटल आसानी से नहीं जाने देगा। बाकी टीमों को सावधान किया आर्सेनल ने। देखे जरा किसमें कितना है दम, बच के रहना प्रीमियर लीग के दुश्मनों। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में दो मैच खेले गए, वाटफोर्ड 2 साउथहैम्पटन 1, बर्नले और वेस्टहैम के बीच मैच ड्रॉ 2-2। स्कॉटिश लीग कप के सेकंड राउंड में हार्ट्स, हिबेनियन, स्टेनहाउसम्यू और रेंजर्स क्वालिफाई हुए। रेंजर्स ने 5-1 से सेंट मिरन को हराया। अब उसका अगला मैच सेल्टिक के खिलाफ होगा। क्लब फ्रेंडलीज में लिवरपूल और कोमो के बीच दो मैचों में पहला मैच ड्रॉ गया 0-0 और दूसरे मैच में लिवरपूल की 2-0 की जीत। नए खिलाड़ी जेरेमी जाके ने अपने डेब्यू मैच में स्कोर किया। पहला गोल गाकपो का रहा। अब अगले संडे को प्रीमियर लीग में लिवरपूल जाएगा न्यूकासल यूनाइटेड के यहाँ। अन्य फ्रेंडली मैचों में टोटनहम हॉटस्पर 2 होफनहाइम 2, डेविस और बार्नेट का एक एक गोल, बाजेल 2 बार्सिलोना 5, शाल्के 0-4 रियल मैड्रिड 3, नोटिंगहम फॉरेस्ट ने ब्रेस्ट को 2-0 से हराया। स्पेन के ला लीगा में रेसिंग सांतांडर 2 विलारियल 2, स्पैनियल ने 3-0 से लेवेंटे को हराया। और फ्रेंच सुपर कप में लांस की जीत पारिस सेंट जर्मेन पर 1-0 से। ट्रांसफर न्यूज, स्पेन के कप्तान रोड्री की घर वापसी। बार्सिलोना उसे 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर साइन करने के लिए राजी है। मैनचेस्टर सिटी के साथ

0: मंजूरी हो गई है। लिवरपूल का टारगेट ब्रैडली बारकोला फ्रेंच सुपर कप वाले मैच में पेरिस सेंट जर्मेन के स्क्वाड में नहीं था, ऊपर से आयक्स के विंगर मिका गोट्स आ गया है, उसको खेलने का मौका दिया गया। एथलेटिक्स में यूरोपियन चैंपियनशिप में ग्रेट ब्रिटेन की स्प्रिंट सेंसेशन आमी हंट रिकॉर्ड 4 गोल्ड मेडल का शिकार कर पाई। 100, 200, 4 बार 100 मीटर वुमेन्स और 4 बार 100 मीटर मिक्स्ड रिले में हंट 4 गोल्ड मेडल जीत पाई। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इटली ने जीता। क्रिकेट, बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत ऑस्ट्रेलिया पर। पहली बार के लिए ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश एक टेस्ट मैच जीत पाया, 9 विकेट की जीत बांग्लादेश के लिए। दूसरी ओर श्रीलंका में टीम इंडिया दूसरे दिन के खेल पर 460 रन पर खेल रही है 9 विकेट खोकर। देवदत्त पदिक्कल 167 रन बनाकर आउट हुआ। ध्रुव जुरेल भी हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया, 460 रन अच्छा टोटल है। आज आखिरी विकेट खोने के बाद टीम इंडिया बॉलिंग करेगी श्रीलंका पर। रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल वे लायंस ने 2-1 से बार्सिलोना एफसी यानी पॉइंट दे लास्का को हराया। पेटांक में एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में रिवियर डू रैम्पार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लड़कों में चैंपियन और महिला कैटेगोरी में पॉम्पलेमूस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाजी मार गई। ग्रो कायू में लगी इस पेटांक फेस्टिवल में रिवियर डू रैम्पार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए बेलवी मोरेल के लड़के चैंपियन बने, रूनी अल्ताफ और अनास हीरो बने। इस कैटेगोरी में टोटल 28 टीमें थी, लड़कों में ट्रिपलेट, महिला कैटेगोरी में डुबलेट। लड़कों में रिवियर डू रैम्पार से बेलवी मोरेल चैंपियन, रनर अप ब्लैक रिवर की बॉम्बू टीम और तीसरा स्थान ट्रियोले की टीम। सो बधाई आदिसे को इस शानदार टूर्नामेंट के लिए। So that's it, the latest from the sports world. आज बच्चा पार्टी, back to school. So all the best सभी बच्चों को, सभी educators को भी. It's the final term, इसलिए bon courage for your exams. लगे रहो, मेहनत का फल मीठा होता है. So work hard, you'll see, you'll shine. आप भी shine करते रहिए. Have a wonderful week ahead. Take care, bye bye.
1: Thank you so much, Arvind ji, for the updates. And of course, Vigili Sadhachkar, 38 minutes away, have jude hai to Radio Masti ke saath, badhte hai with our selection of songs. And of course, a wonderful day goes out to each and everybody tuning to RM2 Radio Masti right now.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Morning Bee.
4: Oh God, one more remix.
3: A good beat for your morning show.
5: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: salam, my friends. Here we go. I got here my lucky winner ready for the question I asked.
1: A good beat for your morning show. RM2.
2: Radio Musty.
0: क्या बात है, क्या गाना था. वैसे सुनकर ना बस जैसे यू गेट इंस्पायर्ड विद द सॉन्ग्स एंड जस्ट रियलाइज यार वक्त निकलता जा रहे हैं. हम जैसे जीना कैसे छोड़ सकते हैं, यू नो, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन लिविंग द लाइफ फुली. ऐसे रुक कर, रोक रोक कर, थाम थाम कर जीना नहीं होता. यू हैव टू लिव, एम्ब्रेस लाइफ, व्हाटएवर थ्रोस एट यू, यू जस्ट एक्सेप्ट इट. और देखिएगा कि कितने आसान हो जाते हैं सारे चैलेंजेस हमारी जिंदगी में. द डे यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, द डे यू स्टार्ट लिविंग थिंग्स. यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले पूछा था सवाल. एक्चुअली आई वॉज सर्चिंग फॉर एन ऑर्गन एंड आपको बताना था ऑन दिस नंबर 5491294 पर किस ऑर्गन को हम ढूंढ रहे थे. द डिटेक्ट लाइट, colors, shapes, movement and distance and send information to the brain. And बहुत सारे सही जवाब मिले हैं, कुछ गलत जवाब मिले हैं, कुछ intensive जवाब्स मिले हैं. और यहाँ पर हमारे साथ हमारे lucky winner, the right answer I was searching is eyes. Yes, simple. मैंने बोला था ना simple. And यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने participate किया है. सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं. Thank you so much for taking out that precious time of yours and sending us a quick message of participation. And हमारे साथ हमारे lucky winner है, उनका नाम है वरुणा. Congratulations वरुणा जी. बोलने बताती हूँ, वरुणा गनावरी रहती है पुतोदो हैमलेट. कंग्रेचुलेशंस माय डियर. वैसे यहाँ पर आपने किला हमारे साथ अच्छे तरीके से सही जवाब देकर आप जीत गई है 40 मिनट्स ऑफ हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राना स्किन एंड लेजर क्लिनिक. एंजॉय डीप क्लेंजिंग, जेंटल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, सीरम फ्यूजन एंड आवर हाइड्रा ग्लो मास्क, ऑल डिजाइन टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड, स्मूथ and beautifully radiant. Your glow starts at Prana. Good day to you. Congratulations again. Have a wonderful, wonderful time ahead with us on RM2 Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Moments that matter with Sikom.
3: सबसे जोली परियोजना अक्सर शुरू होएला एगो निर्णय से। नवा गाड़ी लेके अपन कारोबार के आगे बढ़ाए के, अपन भविष्य के मजबूत बनाए के, या फिर आज ऐसन जीवन चुने के जोन पर्यावरण यानी लॉन्विहोन म खातिर बेहतर होए। सिकोम तुहर सब परियोजना के आगे बढ़ाई में साथ दिवेला। हमनी दिनी से देवल जाए होला होम लोन आर लीसिंग के कई गो ऑप्शन बा, जोन तोहरा पर्यावरण यानी लॉन्विहोन म पर कमती असर डाले में तोहरा प्रोत्साहित करेला, जेकर से आई होला पीढ़ी खातिर भी एगो निमन आर बेहतर काल बनाए सकबा। हमनी के वित्तीय समाधान तोहर सपना, तोहर जीवन की सब फैसला आर उ सब पल में तोहर संगी बा, जोन तोहर खातिर सबसे जस्ती मायना रखेला। सिकोम एगो ऐसन साथी है जेकर लगे हर जरूरत के समाधान है।

नमस्ते पेश है भोजपुरी के समाचार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम मुलाम का दोपहर के दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचलन, जहां पर ही सदक के राष्ट्र सरकारी नेता लोग के 46वां शिखर सम्मेलन में भाग लिहन। एक उद्घाटन आज दिन के करल जाए। सदक के 16 गो सदस्य देश लोग के अधिकारी लोग एक में शामिल होत हो जा। एक अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के समक्ष खड़ा चुनौती के बेहतर सामना करे खातिर इलाकाई सहयोग के नवा गति देवे खातिर ध्यान केंद्रित कर जाए। मामी हवातो मांगा मामला में आज एगो नवा कानूनी कार्यवाही शुरू होता। मनागास्कर के ई व्यवसायी खिलाफिरों से

0: बेल आर रमान कोर्ट के सामने पेश हुई हैं। वो जमानत परी रिहाई की मांग करत हुन, जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन कर परी आपत्ति जतैली बाटे। ई मामला में आज आर काल हुए होला सुनवाई महत्वपूर्ण साबित हो सकेला। मामी अगवा तो मांगा कि अक्टूबर 2025 से मेलरोज के हाई सिक्योरिटी कैद खाना में रखल गल है। 24 अक्टूबर के फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन 56 बरिस के ई व्यवसायी के तब गिरफ्तार कर ले रहा, जब वो एगो निजी क्लिनिक में भर्ती रहलन। ओकर परी 3 अस्थायी आरोप दर्ज बाटे, 2 मनी लॉन्ड्रिंग के आर एगो षडयंत्र के। ये आरोप मारागास्कर और मॉरिशस के बीच कुल 7.3 बिलियन रुपया के फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़ल FCC के जांच के एगो हिस्सा है। आज के स्कूली प्रवेश के संगे तीसरा का टर्म शुरू हुआ था, एक खातिर एक आगो नवा नियम लागू होल बाटे। आज से स्कूल में छात्र लोग दिनी से मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए के बदलाव आनल जाता। ई फोन उ लोग फोन अपन संगे लेवे सकियन जा, बकीर ओकरा साइलेंट मोड पर ही रखे के पड़ी और कक्षा के दौरान अलग रखे के पड़ी। फोन के इस्तेमाल खारी शिक्षक लोग की अनुमति से ही करल जा सकी, या तो शिक्षा से जुड़ल कोनो गतिविधि खातिर या फिर मेडिकल कारण से। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद के अनुसार छात्र लोग के हित के ध्यान में रख के फैसला लेवल गल है, जिनमें छात्र लोग की कक्षा में बेहतर तरीका से ध्यान देवे की मदद मिली और शिक्षा के बेहतर माहौल पैदा हुई। मंत्रिमंडल गल 17 जुलाई की कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में आने खातिर स्वीकृति दे ले रहल। एकर तहत छात्र लोग स्कूल में मोबाइल फोन ले सकें जा, बकीर ओकरा साइलेंट मोड रखे के पड़ी। ई नियम छात्र लोग के मौजूदगी में शिक्षक लोग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू हो, जहाँ एकादगो अभिभावक लोग ई फैसला के स्वागत करत हुन जाए। हुए परी युवा लोग खुद ही सवाल उठावत हुन जा कि आवश्यकता पड़ला पर वो लोग अपन माँ बाप के संपर्क कैसे करियन जा। नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में 2 नवा निदेशक नियुक्त होल हवन जा, एकर में विजय ताजरी शामिल हवन। पोतास एनसोया नामकर सरकारी संगठन की अध्यक्षा के ई मानना है कि उनकर परी करल गली विश्वास खातिर हुआ भारी हवन। 39 बरिस के विजेता जारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता रखेलन और उनके अनुसार ई उलो ऊ अपन नवा जिम्मेदारी के महत्व बखूबी निभावे सकियन। दूसर देश के खबर में हंगेरी में एगो मोटोवे परी पोलैंड के श्रद्धालु लोग के ले जावे बखत एगो बस उलट गल, एकर से 12 जना की मौत होल बा, दर्जनों घायल होल हवन जा। उधर रशिया ई बोल ले बाटे कि यूक्रेन देने से करल गल ई बारिश के अभी ले सबसे भीषण हमला में कम से कम 7 जना की मौत होल बाटे। मॉस्को के निशाना बना के ई हमला में 822 को ड्रोन चलावल गल है। तय रहल भोजपुरी के समाचार, तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2 Radio.

0: की आवाज में दमाद बाबू, क्या बात है। दिस वन गोज आउट टू ऑल द न्यूली वेड्स कपल एंड ऑफ कोर्स ये है हमारे लोकल कलाकार आपके लिए। गुड मॉर्निंग आप देयर, 8:10 होने को है, आप जुड़े हैं आरएमटी रेडियो मस्ती इंडीड ऑफ कोर्स द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस आपकी मॉर्निंग को और भी मस्त बनाने के लिए ऑन रेडियो मस्ती। अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, पता करते हैं कि हमारे जो आज का मौसम का हाल कैसा होने वाला है। हियर वी गो,
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: आम हालत हमारे इलाके को प्रभावित कर रहा अस्थिरता का जोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, जबकि पूर्व से आ रहे कुछ बादल रात के दौरान हमारे इलाके से गुजरेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज सुबह और दोपहर बाद रह रहकर बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व और ऊंचाइयों पर। रात के दौरान भी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश की संभावनाएं हैं, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, दक्षिणी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सरल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:30 पर सूर्योदय, शाम को 5:57 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
4: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de jus de fruits, les vergers.

0: आज बजकर अभी 15 मिनट हुए हैं. यो वेलकम आर टू रेडियो मस्ती. ऐसे गाते रहो, मुस्कुराते रहो और न भूले कि सुबह की शुरुआत होनी चाहिए क्विक, टेस्टी भी और न्यूट्रिशियस भी. अगर आप अपने आपके पास ब्रेकफास्ट करने ज्यादा टाइम नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा बनाना ओट स्मूदी. यस, बनाना ओट्स प्लस मिल्क और थोड़ा सा हनी ब्लेंड कीजिएगा और अपने ब्रेकफास्ट इज रेडी इन जस्ट फ्यू मिनट्स. और याद रखिए कि खाओ हेल्दी, रहो एनर्जेटिक और एंजॉय करो अपना डे हमारे साथ. लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे. सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जोन जस्सी इकोलॉजी खा. इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई. जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क करा या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइया. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा. सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट.
1: RM2
4: रेडियो मस्ती.

0: Your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: बजकर अभी 20 मिनट हुए हैं एंड आई नो दैट थोड़ी फंसे हो ट्रैफिक में. वैसे हम लेकर आ रहे हैं ट्रैफिक अपडेट इन अ शॉर्ट वायर, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐड ऑन भी करना चाहते हो कि सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते ही ना यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. डिसाइड कीजिए कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम लेता है, इन अर्जेंट है, और यू नो क्लासिफाई योर वर्क ऑल्सो एज पर दीज नेसेसिटीज एंड प्रायोरिटीज. ओके, एंड आप अपना ये जो टाइम मैनेजमेंट देखिएगा कि कितना आसान हो जाते हैं, दिन वेरी प्रोडक्टिव हो जाती है, यू गेट टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो. कुछ लोग होते हैं कि वी जस्ट पोस्टपोन द हार्डेस्ट वर्क जो पेंडिंग है इतने सारे टाइम, जस्ट डू इट फर्स्ट यार, काम तमाम ही कर लो, देन आफ्टरवर्ड्स

0: soon.
1: Traffic update.
0: आज बजकर अभी 26 मिनट हुए हैं, आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती। लेडीज एंड जेंटलमैन, पता करते हैं कि हमारे सर को ऊपर सब ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है, सब जानकारियां लेकर आ रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सर शॉकू, गुड मॉर्निंग टू यू।

0: Bonjour, tout le monde. J'étais dans la route. Alors, pour ce matin, comme tu connais, nous sommes logistiques la rentrée des classes. Donc, grand nombre de véhicules déjà nous mettent en route. Et ce matin, et bon, dans certaines places, nous pouvons prendre justement le temps d'arrêt. Du côté de M1, alors, du côté de la Vigie, Confoco et Highlands, bien sûr, là, du côté de la Vigie et Wooten, nous pourrons remarquer que le trafic, alors, il bouge lentement. Et ça, c'est un accident qui vient d'arriver un petit peu plus tôt. Un bus avec ma voiture, alors heureusement pas de blessés. Et de sa place, nous avons fait Moses Fire and Rescue Services, Vincent le Dieu. Et donc, tout cela finit ajouté ensemble, fin cause un ralentissement du réseau de trafic dans un secteur-là. Alors, que vous pouvez avec nous, heureusement, alors, fin déjà enlève toute mon obstruction et la nuit fin nécessaire donc, pour faciliter le passage du côté de Confoco, Highlands, dans un secteur-là. Et prochain ralentissement, nous pouvons noter du côté de Pontferre. Alors, comme tu connais, tu côté de Pontferre, il y a un grand nombre de véhicules là-bas, dans toutes les directions, sorti Vacquois ou bien Saïd-de-Seine qui viennent rejoindre du côté de Pontferre. Et ça, bien sûr, là-bas, un ralentissement, prochain ralentissement, et prochain ralentissement du côté de Saint-Jean et l'entrée du Ben. Sinon, prochain ralentissement à nouveau du côté de Sorèze, pareil, et à l'entrée de Port-Louis. Du côté de M2, alors, ralentissement du côté de Terre-Rouge, Ristère, Rochebois, Fanfaron et à l'entrée de Port-Louis. Du côté de M3, on va passer plus vite, sauf à l'approche du, sauf à l'entrée du Ben. Du côté de l'ancienne route, maintenant, du côté de Beaubassin, Coromandel, Grand River Nord-Ouest, Bay Village, et toujours à l'entrée de Port-Louis. Alors, sinon, pour ce matin, conseil du jour, alors, nous vous disons, en cas d'accident, alors, je vous ai arrêté, sécurise les lieux, alors, porte l'assistance à ma blessée, je vous ai alerté les autorités, facilite le passage de secours et pas quitte les lieux. Alors, là, il est important aussi pour mentionner, dans le cas de ban accident mineur, alors mineur, on peut redire que peine à blessé, que peine à dommage à l'infrastructure, peine à plus qu'il deux véhicules impliqués, et ban chauffeur, et dans votre licence, votre permis de conduire en bonne et due forme, peine à aucun chauffeur sous l'emprise d'alcool ou de drogue, une police d'assurance qui est effective sur le véhicule là. Alors, quand sur une condition que vous mentionnez là, vous êtes réunis, vous ne pouvez pas faire compte à l'amiable. Et dans ce cas-là, il est important que vous sécurisez le lieu. Mode position de véhicule, et là, on retire l'obstruction, bien sûr, pour échange de documents. Et si quelqu'un a des difficultés, nous vous demandons d'informer l'autorité, attendre l'arrivée de l'autorité pour bouger le véhicule. Sur ce, je souhaite tout le monde très bonne route, avec beaucoup de prudence, long de la route. Et à très bientôt. Merci.
1: Thank you so much, Serge Akua, for the updates. Have a wonderful day to you too.
2: Morning beat.
3: Oh God. One more remix.
2: A good beat for your morning show.
4: RM2, Radio Musty in the mix.
5: Sports news.
4: Radio Musty in the mix.
1: एक सुबह की 8:30 है और आप तो जानते ही है कि 8:30 एक क्विक रिकैप हो जाते हैं स्पोर्ट्स अपडेट के साथ कि हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है. फॉर दोज हु हैव मिस्ड आउट द 7:30 स्पोर्ट्स अपडेट्स, हियर वी गो. गुड मॉर्निंग टू यू अगेन अरविंद जी.
6: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. कम्युनिटी शील्ड जीत गया आर्सेनल, एक नहीं दो नहीं 3-0 से आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को रौन डाला. सिटी मार नहीं, सिटी की तीन बार मार ही मार. माइकल आर्टेटा से कोई अटट नहीं, इस बार आखिरकार प्रीमियर लीग चैंपियन जो ठहरे. रिकार्डो कालाफ्योरी, काई हावर्ट्स और मार्टिन ओडेगार्ड एक के गोल स्कोर कर पाए. मिकेल आर्टेटा ने कहा कि उसे भी विश्वास नहीं था कि उसकी टीम इस तरह से मैनचेस्टर सिटी को मसल कर पसार देगी. दूसरी ओर मैनचेस्टर सिटी के नए कोच एंजो मारेस्का को लगा टॉप फ्लाइट फुटबॉल का चस्का. हार में दर्द है पर यह केवल शुरुआत है, बस इतना कह पाया मारेस्का. कहते हैं जो कम्युनिटी शील्ड जीतता है चैंपियन नहीं बनता. 34 सीजन में 30 बार ऐसा हुआ है. पर आर्सेनल ने जिस तरह से बमबारी की और जिस तरह से सिटी की धुलाई हुई, लगता है आर्सेनल अपना टाइटल आसानी से नहीं जाने देगा. बाकी टीमों को सावधान किया आर्सेनल ने. आ देखे जरा किसमें कितना है दम. बच के रहना प्रीमियर लीग के दुश्मनों. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में दो मैच खेले गए. वाटफोर्ड 2 साउथहैम्पटन 1, बर्नले और वेस्ट हैम के बीच मैच ड्रॉ 2-2. स्कॉटिश लीग कप के सेकंड राउंड में हार

0: Hearts, Hibernian, Stenhouse Mew और रेंजर्स क्वालिफाई हुए। रेंजर्स ने 5-1 से सिंट मिरन को हराया। अब उसका अगला मैच सेल्टिक के खिलाफ होगा। क्लब फ्रेंडलीज में लिवरपूल और कोमो के बीच दो मैचों में पहला मैच ड्रो गया 0-0 और दूसरे मैच में लिवरपूल की 2-0 की जीत। नए खिलाड़ी जेरेमी जाके ने अपने डेब्यू मैच में स्कोर किया। पहला गोल गाकपो का रहा। अब अगले संडे को प्रीमियर लीग में लिवरपूल जाएगा न्यूकासल यूनाइटेड के यहाँ। अन्य फ्रेंडली मैचों में टोटनहम हॉटस्पर 2 होफेनहाइम 2 डेविज और बार्नेट का 1-1 गोल, बाजेल 2 बार्सिलोना 5, शाल्के 0-4 रियल मैड्रिड 3, नोटिंगहम फॉरेस्ट ने ब्रेस्ट को 2-0 से हराया। स्पेन के ला लीगा में रेसिंग सांतांडर 2 विलारियल 2, स्पैन्योल ने 3-0 से लेवेंटे को हराया और फ्रेंच सुपर कप में लांस की जीत पारिस सैन जर्मे पर 1-0 से। ट्रांसफर न्यूज, स्पेन के कप्तान रोड्री की घर वापसी। बार्सिलोना उसे 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर साइन करने के लिए राजी हैं। मैनचेस्टर सिटी के साथ मंजूरी हो गई है। लिवरपूल का टारगेट ब्राडले बारकोला फ्रेंच सुपर कप वाले मैच में पेरिस सैन जर्मेन के स्क्वाड में नहीं था। ऊपर से आयक्स के विंगर मिका गोट्स आ गया है, उसको खेलने का मौका दिया गया। एथलेटिक्स में यूरोपियन चैंपियनशिप में ग्रेट ब्रिटेन की स्प्रिंट सेंसेशन आमी हंट रिकॉर्ड 4 गोल्ड मेडल का शिकार कर पाई। 100, 200, 4x100 मीटर वुमेन्स और 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में हंट 4 गोल्ड मेडल जीत पाई। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इटली ने जीता। क्रिकेट, बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत ऑस्ट्रेलिया पर। पहली बार के लिए ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश एक टेस्ट मैच जीत पाया। 9 विकेट की जीत बांग्लादेश के लिए। दूसरी ओर श्रीलंका में टीम इंडिया दूसरे दिन के खेल पर 460 रन पर खेल रही है 9 विकेट खोकर। देवदत्त पदिक्कल 167 रन बनाकर आउट हुआ। ध्रुव जुरेल भी हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया, 460 रन अच्छा टोटल है। आज आखिरी विकेट खोने के बाद टीम इंडिया बॉलिंग करेगी श्रीलंका पर। रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर रोशनोय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल वे लायंस ने 2-1 से बार्सिलोना एफसी यानी पॉइंट दे लास्का को हराया। पेटांक में एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में रिविया जुरांपा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लड़कों में चैंपियन और महिला कैटेगोरी में पॉम्पलेमूस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाजी मार गई। ग्रोकायू में लगी इस पेटांग फेस्टिवल में रिविया जुरांपा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए बेलवी मोरेल के लड़के चैंपियन बने। रूनी अल्ताफ और अनास हीरो बने। इस कैटेगोरी में टोटल 28 टीमें थी। लड़कों में ट्रिपलेट, महिला कैटेगोरी में डुबलेट। लड़कों में रिविया जुरांपा से बेलवी मोरेल चैंपियन, रनर अप ब्लैक रिवर की बॉम्बू टीम और तीसरा स्थान ट्रियोले की टीम। सो बधाई आदेशे को इस शानदार टूर्नामेंट के लिए। So that's it, the latest from the sports world. आज बच्चा पार्टी, back to school. So all the best सभी बच्चों को, सभी educators को भी. It's the final term, इसीलिए bon courage for your exams. लगे रहो, मेहनत का फल मीठा होता है. So work hard, you'll see, you'll shine. आप भी shine करते रहिए. Have a wonderful week ahead. Take care, bye bye.
1: Thank you so much, Arvind ji, for the updates. Back to school. All the best and a very good day. RM2 Radio Masti.

0: c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: Here we go for the quote of the day. ऐसे कहते हैं कि जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती और कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स सामने आ जाती है। लेकिन याद रखिए, एक बैड डे का मतलब बैड लाइफ नहीं होता। अगर आप आज कुछ अचीव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, खुद को ब्लेम करने की वजह से ये दिन खराब हो जाएगा, बल्कि कल पर फोकस कीजिए, कल एक फ्रेश स्टार्ट दीजिए। छोटी छोटी एफर्ट्स, डेली डिसिप्लिन और पॉजिटिव थिंकिंग मिलकर एक दिन बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसे दूसरों के जर्नी से अपने जर्नी कंपेयर ना कीजिए। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, केवल अपने आप से होती है। तो आज एक स्मॉल स्टेप लीजिए, अपने गोल की तरफ बढ़िए और खुद पर यकीन कीजिए। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग ऑल्सो, एंड नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ वन पॉजिटिव डिसीजन। That was the quote of the day. 8:40 हुए हैं।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: Morning beat.
6: Oh God, one more remix.
5: A good beat for your morning show.
7: RM2, Radio Musty, in the mix.

कुछ कुछ होता है मूवी से लिया गया ये गाना स्पेशली फॉर ऑल दोस जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वांट यू टू से कि यार यू आर द बेस्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग कोई देखे या ना देखे लेकिन I just want you to keep going. Try harder each and every day. आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है. Always be positive और हार मत मानिएगा. ये मुझे बहुत पसंद नहीं होता जब कोई कहता है कि यार give up. No, no, no, no. Try करते रहिएगा. हमेशा try harder each and every day. It's an opportunity for you. It's an excuse actually to do

रंगीलो मनवा स्पेशली फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. थोड़ी देर में जाने का समय भी हो चलेगा, बस करीबन 10 मिनट बाकी एंड देन नीलमणि आ रही है वापस 9 से लेकर 12 बजे तक XXL मूवी से. बीट को एंजॉय कीजिएगा, सुर को भी एंजॉय कीजिएगा.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: चलिए जाते जाते एक रोमांटिक सॉन्ग आप सभी के नाम तेरा नाम दो एंटरटेनमेंट मूवी से आतिफ असलम मशाल मेरी खोल करी की आवाज में पूछे जो कोई तो तेरा नाम लूं।

0: बताते चलिए सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल दोपहर दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे, जहां वे सादेक के राष्ट्र और सरकारी नेताओं के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। सादेक के 16 सदस्य देशों के अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के समक्ष खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए इलाकाई सहयोग को और गति देने पर ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के काले यानी टिंटेड शीशे के परमिट के लिए आवेदन से जुड़े नियम लाने की योजना बना रहे हैं, खासकर मेडिकल वजहों से सामने की विंडशील्ड और आगे की साइड वाले शीशों से कम 75% रोशनी अंदर आनी चाहिए। हालांकि 5% की छूट दी जाएगी। नए निर्देशों में उन मेडिकल स्थितियों के बारे में स्पष्टता होगी जिनके लिए ये सुविधा मिलेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी और दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन की एक प्रणाली होगी। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के

0: अनुसार नए नियमों की तैयारी की जा रही है। मामी अवातुमांगा मामले में आज एक नई कानूनी कार्यवाही शुरू हो रही है। मडागास्कर के ये व्यवसायी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले में आज और कल होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मामी अवातुमांगा को अक्टूबर 2025 से मेलरोज के हाई सिक्योरिटी कैदखाने में रखा गया है। 24 अक्टूबर को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 56 वर्षीय इस व्यवसायी को तब गिरफ्तार किया था जब वो एक निजी क्लिनिक में भर्ती थे। उन पर 3 अस्थाई आरोप दर्ज किए गए हैं, 2 मनी लॉन्ड्रिंग के और 1 षड्यंत्र का। ये आरोप मडागास्कर और मॉरिशस के बीच कुल 7.3 बिलियन रुपए के फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़ी FCC की जांच का हिस्सा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, रशिया का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से किए गए इस साल के अब तक के सबसे भीषण हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। मॉस्को को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 822 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। इस हमले में रशिया के एक वेयरहाउस को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे आ दीजिए। नमस्कार।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नौ बजकर आठ मिनट होने को है, मस्ती मॉर्निंग शो शुरू हो चुका है। एंड पहले आपको मिला मनीष माँ का साथ, अभी निर्मनी आ गई है आपको एंटरटेन के लिए गानों के जरिए इस आओ में, और उसको भी होगा और आपके लिए बहुत सारे टिप्स भी लाने वाले हैं। तो यही पर आरएम2 रेडियो मस्ती पर यू स्टे ट्यून।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: And yes, आप कनेक्टेड हो चुके हो मस्ती मॉर्निंग के साथ. 9:20 हुए हैं मंडे मॉर्निंग और ट्रैफिक ने तो आज प्रॉपर मंडे फील करा ही दिया. रोड पे गड्डियों की लाइन, पेशेंस का टेस्ट और हॉर्न का कंसर्ट, सब कुछ एक साथ. लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम पहुंच गए सेफ एंड साउंड. एंड ऑनेस्टली वही काउंट करता है. डेस्टिनेशन पर थोड़ा लेट हो कोई बात नहीं है, बस सेफली पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो अगर आप अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हो, डीप ब्रेथ लीजिए, फेवरेट सॉन्ग लगाओ, पेशेंस रखो और प्लीज फोन हाथ में मत लेना व्हाइल ड्राइविंग. इट्स योर RM2 रेडियो मस्ती एंड वी केयर फॉर योर सेफ्टी. तो नेक्स्ट गाना मिका सिंह जी की आवाज में आपको फिर से एक्टिव बनाने के लिए.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio.
1: नाम का तो पता नहीं, लेकिन हिंट दे सकती हूँ कि दिन में क्या क्या हो सकता है, ये बता सकते हैं आपके होरोस्कोप के जरिए. सो लेट्स फाइंड आउट स्टार्टिंग विद
2: एरीज. मेष राशि.
1: मंडे तो भाई आज फुल स्पीड पे है, आज इनिशिएटिव लीजिए, किसी और रखे ग्रीन सिग्नल का वेट मत कीजिए. लव लाइफ में थोड़ा एटीट्यूड कम, प्यार ज्यादा. लकी नंबर आज आपका है 9 और कलर है आपका रेड.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, पैसा और काम दोनों में स्मार्ट डिसीजन लेने का दिन है. और हाँ, अननेसेसरी शॉपिंग को सेल्फ केयर बोल के जस्टिफाई मत करो. लकी नंबर आपका है 6 और कलर है ग्रीन.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: मंडे तो आपके लिए कम्युनिकेशन का गेम है, एक अच्छी कन्वर्सेशन भी बदल सकती है और अपॉर्चुनिटी भी ला सकती है. बस गॉसिप को न्यूज बुलेटिन मत बना देना. लकी नंबर आपका है 3 और कलर है आपका येलो.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: दिल की सुनो, लेकिन इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील मत दीजिए. फैमिली के साथ एक स्वीट मोमेंट आज का मूड बना देगा. लकी कलर आपका है 2 और लकी कलर आपका है सिल्वर और नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज स्पॉटलाइट नेचुरली आपके पास आ सकती है. कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. बॉस को इम्प्रेस करना है तो मंडे मॉर्निंग से ही सुपरस्टार मोड ऑन. लकी नंबर आपका है 1 और कलर है गोल्डन.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: टू डू लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. एक से एक काम निपटाओ और प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद आ जाएगी. लकी नंबर आपका है 5 और कलर है ब्लू.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: बैलेंस ही आज का की है आपके लिए. वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच थोड़ा हार्मनी रखिए और रिलेशनशिप में मैं सही हूँ से ज्यादा चलो बात करते हैं काम करेगा. लकी नंबर आपका है 7 और कलर है पिंक.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: मंडे मिस्टीरियस एनर्जी के साथ आ रहा है, कोई हिडन अपॉर्चुनिटी भी सामने आ सकती है. अपनी आँखों को खुला ही रखिए और सीक्रेट्स सीक्रेट्स ही रहने दीजिए. लकी कलर है आपका मरून और नंबर है 8.

0: सजिटेरियस धनु राशि। एडवेंचर का मूड पहले से ही ऑन है। रूटीन से बोर रहो तो कुछ नया ट्राई करो। एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज या प्लान आपके मंडे को इंटरेस्टिंग बना सकता है। लकी नंबर आपका है 4 और कलर है ऑरेंज।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: कैरियर जोन स्ट्रॉन्ग है। जो काम पेंडिंग था आज उसको फाइनली फिनिश करने का परफेक्ट टाइम है। मंडे को फ्राइडे जैसा फील करवाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लकी नंबर आपका है 10 और कलर है नेवी ब्लू।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज नई आइडियाज की बारिश हो सकती है। कुछ क्रिएटिव सोच रहे तो लिख लेना, कल तक भूल भी सकते हो। सोशल एनर्जी भी अच्छी रहेगी आज। लकी नंबर आपका है 11 और कलर है चौकवार।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज का मूड होगा थोड़ा ड्रीमी, थोड़ा इमोशनल और फुल क्रिएटिव वाइब्स से। आज अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए और अगर किसी स्पेशल पर्सन का मैसेज आए इग्नोर मत करना। लकी नंबर आपका है 12 और लकी कलर आपका है लैवेंडर।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे मंडे का एक सिंपल जिप होता है हाइड्रेट बिफोर यू कैफीनेट्स. हमारे जो लोग ऑफिस पहुंच गए होंगे, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फॉर श्योर तो स्किप कर लिया गुड रूटीन को. आई नो कॉफ़ी या चाय ज़रूर चाहिए सुबह को, समझ सकती हूँ, बट सुबह उठ के पहले गिलास पानी पी लिया करो. आपकी बॉडी पहले से ही डिहाइड्रेशन से गुजर चुकी है जब आप सो रहे होते हो, तो आज वाटर फर्स्ट, कॉफ़ी या चाय सेकेंड पोजिशन पर, मंडे की शिकायतें थर्ड पोजिशन पर. द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज इन योर मस्ती मॉर्निंग विद नर्मनी.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: साडी गाली तो आप आ चुके हो, ये सबके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। आप है आशा जी, स्पेशल सॉन्ग मांग रहे हैं अपनी जान के लिए और विश कर रहे हैं सभी को ए लवली वीक अहेड। आपको भी सेम आशा जी। एंड आज बर्थडे है ऑफ मिंटा जी, जिनका निकनेम है मिंटू, एंड आप मना रहे हैं अपना 50th बर्थडे। यूहू, बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम द होल आरएमटू टीम। एंड सायरा बानो जी एंड अब्दुल साहब भी जुड़ चुके हैं, सो बिग हेलो टू यू। मिलेंगे कुछ ही देर में फ्लैश न्यूज के साथ। अभी के लिए गानों के साथ वाइब करते हैं आपके ही मस्ती मॉर्निंग में।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति। नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणी, श्रोताओं को भी नमस्कार। सार्वजनिक परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के काले यानी तीन-तीर शीशे के परमिट के लिए आवेदन से जुड़े नियम लाने की योजना बना रहा है, खासकर मेडिकल वजहों से सामने की विंडशील्ड और आगे की साइड वाले शीशे से कम 75% रोशनी अंदर आनी चाहिए। हालांकि 5% की छूट दी जाएगी। नए निर्देशों में उन मेडिकल स्थितियों के बारे में स्पष्टता होगी जिनके लिए ये सुविधा मिलेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी और दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन की एक प्रणाली होगी। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नए नियमों की तैयारी की जा रही है। आज के स्कूली प्रवेश से तीसरा टर्म शुरू हो रहा है, इसके लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। आज से स्कूल में छात्रों द्वारा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर बदलाव लाए जा रहे हैं। वे फ़ोन साथ ले जा सकते हैं लेकिन उन्हें साइलेंट मोड पर रखना होगा और कक्षा के दौरान उसे अलग रखना होगा। फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ शिक्षक की अनुमति से ही किया जा सकेगा, या तो शिक्षा से जुड़ी किसी गतिविधि के लिए या मेडिकल कारणों से। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद के अनुसार छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ये फैसले लिए गए हैं ताकि छात्रों को कक्षा में बेहतर तरीके से ध्यान देने में मदद दी जाए और शिक्षा का बेहतर माहौल पैदा हो। शनिवार 15 अगस्त को हवाई अड्डे पर SSU की टेक्निकल यूनिट में पोस्टर एक पुलिस अफसर को रोका गया। वो अपनी पत्नी के साथ एमिरेट्स की उड़ान से दुबई से मॉरिशस पहुंचे थे। उनके पास से 30 ग्राम गांजा और कई अवैध पदार्थ पाए गए। उस पर ड्रग्स आयात करने का अस्थायी आरोप दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रशिया का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से किए गए इस साल के अब तक के सबसे भीषण हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। मॉस्को को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 822 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले में रशिया के एक वेयरहाउस को

0: भारी नुकसान पहुंचा है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। एसएसओ रोड इलो कौंजाब में सिक्सटी सिक्स ईयर्स ओल्ड श्रीमती धनवंती बोलक पिताजी नाम पुनीत, जो बिंदु नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दस बजे इनके पति श्री राधा किशन बुलक के मकान एसएसओ रोड कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। रामा रोड शामुनी में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड श्रीमती भगवती हरबोसिया पैदाशी नाम उगा, जो सरोज नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे श्री कृष्णादत्त हरबोसिया के मकान रामा रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Yes, so welcome back, Musty Morning का second hour शुरू हो चुका है KK की आवाज के साथ. And आज मंडे है तो एक काम करो, अपना schedule जो है उसे realistic रखो. To do list में 25 से चीजें लिख के खुद को स्ट्रेस से देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त. पिक द इम्पोर्टेंट वंस, बाकी को बोलो तुमसे ट्यूसडे यानी कि कल को मिलते हैं, और जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको 3 दिन तक पेंडिंग मत रखा करो. गेट इट डन एंड मूव ऑन, ऐसे ही स्मार्टली सारा काम हो जाता है. तो निर्मणि के साथ जुड़ रही और टिप्स के लिए 12 बजे तक ऑन योर RM2 रेडियो मस्ती.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings.
4: I'm a Karina kise din aale pyaar mundiya tu...
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: दिल बेकरार कतई नहीं है क्योंकि आर एम टू रेडियो मस्ती यही पर है साथ ही देने के लिए. एंड यस, इस आवर में अमेजिंग गानों के संग आपको मिलेगा टिप्स रिलेटेड टू फैशन एंड ऑल्सो ऑन लाइफ स्टाइल, कैसे हम अपनी लाइफ को संवार सकते हैं इन अ गुड वे. एंड ऑल्सो 5491294 पर आपके मैसेजेस को भी पढ़ेंगे. ऐसे ही कीप एंजॉयिंग द म्यूजिक क्योंकि गानों के बीचों बीच में आपको टिप्स लाती रहेगी.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: Yes, it's fashion time. सोमवार का दिन है, जो कम्फर्ट विद एटीट्यूड इज द टिप. आप कम्फी आउटफिट चूज करें, लेकिन एक स्टेटमेंट पीस एज यूजुअल जरूर ऐड कीजिएगा. एंड अगर आज दिन बोरिंग लग रहा है तो कलर थेरेपी का टिप भी ट्राई कर सकते हो. ट्राई कीजिए ब्राइट ब्लू, ग्रीन, येलो या फिर एक पॉप ऑफ रेड. शूज भी मैटर करती है, सो चूज कीजिए एक अच्छा सा फुटवेयर सो दैट यू कैन सर्वाइव द डे इन. चलो कहर मचाते हैं. अरे अगले गाने का नाम है कहरकुरी, गुरु रंधावा की आवाज में आपके लिए आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही.
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
2: आरएमजू रेडियो मस्ती.

0: tune.
1: Radio Musti.
0: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करें। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी एकोलोजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: दुनिया तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टूडियो में हमारे आ चुके हैं बहुत सारे स्पेशल लोग। गुड मॉर्निंग।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: एंड यस, स्टूडियो में हमारे बहुत सारे खूबसूरत लोग आ चुके हैं। हमारे साथ
3: खूबसूरत हैं।
0: थैंक यू। हमारे साथ बैठी है प्रतिमा जी। कैसी हो आप?
3: आप ठीक हैं?
0: आप ठीक हो? आप कहाँ पर जा रहे हो?
3: आप यहाँ से
4: समुंदर जाएंगे?
3: नहीं, समुंदर नहीं, एक
0: ओके। तो आप MBC पर आपका पहला विजिट है या फिर?
3: हाँ, पहला
0: पहला विजिट है। हाँ। तो आपको कैसा लगा?
3: बहुत सुंदर
0: है।
3: आपने खुश हुआ? बहुत खुश हुआ।
0: बहुत खुश हुए आप? तो आपने हर जगह विजिट कर लिया?
3: नहीं, ये
0: सिर्फ रेडियो डिपार्टमेंट को विजिट किया। टीवी
3: पहले वहाँ जब प्रोग्राम होता है तो दूसरा यहाँ।
0: ओके, तो आपको कैसा लगा माहौल?
3: माहौल
0: लोग कैसे हैं यहाँ पर?
3: अच्छे हैं,
0: बहुत अच्छे
3: हैं, ठीक हैं।
0: तो आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया अपने विजिट को। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड डे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।
3: थैंक यू,
0: बाय।
5: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
2: You're listening to Musty Mornings.
6: I'm a Karina, kise din aale pyaar mundiya to...
2: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: दिन के 11 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अदिति। नमस्कार।
5: नमस्कार निर्मणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल दोपहर दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे, जहां वे सादेक के राष्ट्र और सरकारी नेताओं के 40वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। सादेक के 16 सदस्य देशों के अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के समक्ष खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए इलाकाई सहयोग को नई गति देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रमाइसेस Regulations 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी। इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा। ये नियम छात्रों की मौजूदगी में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे। जहां कुछ अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा खुद से सवाल उठा रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने माता पिता से संपर्क कैसे करेंगे। नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में दो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनमें विजय ताजरी शामिल हैं। पोतास एंड सोया नामक गैर सरकारी संगठन की अध्यक्षा का कहना है कि उन पर किए गए विश्वास के लिए वे आभारी हैं। 39 साल की विजय ताजरी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता रखती हैं और उनके अनुसार वे अपनी नई जिम्मेदारियों के महत्व से पूरी तरह वाकिफ हैं। उनका कहना है कि वे NEF के अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखती हैं, ताकि लाभार्थियों को ज्यादा फायदा हो। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, हंगेरी के एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस उलट गई, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल बताए गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस चालक को नींद आ गई थी, जिसके कारण से उसने बस पर से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा पेश आया। उसे हिरासत में लिया गया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। महंत कबीर अवेन्यू वाकवा में श्रीमती कैरुमती बख्तवर, पैदाशी नाम देवी जो बसंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान महंत कबीर अवेन्यू वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
6: NBC Play, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गाने तो फर्स्ट क्लास है, हाल भी फर्स्ट क्लास है एंड गाना से हमें बनी की डांस स्टेप्स याद आ गया ना। वैसे मस्ती मॉर्निंग के तीसरे आवर में आपका फिर से स्वागत है। बहुत से लोग आरएम2 रेडियो मस्ती को विजिट करने के लिए आए एंड दे हैड अ रियली गुड टाइम। डेडिकेशंस भी उन्होंने दे दिया गानों का एंड बाकी मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। गानों के साथ साथ टिप्स भी ऑन द वे हैं, आप यही पर एंजॉय करते रहिए गुड म्यूजिक को।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरी, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: छू मंतर करवा सकते हैं आपके स्ट्रेस को सिंपल टिप के साथ। एक बार ही नहीं बल्कि हर बार ये टिप काम आ सकता है और वो है डू नॉट ओवरलोड योर मंडे। आज पिक करना है आपको अपने टॉप थ्री प्रायोरिटीज को एंटायर वीक को कंकर करने के बजाय, वो भी लंच टाइम से पहले। और वो है जब तीन जरूरी टास्क को प्रायोरिटाइज कर दोगे तो स्ट्रेस लेवल आपका जो है वो खुद ब खुद ड्रॉप कर जाएगा टू द लोएस्ट लेवल। एंड जब भी टिप्स की जरूरत हो तो चले आना, क्योंकि निर्मनि यही पर है टिप्स के साथ आपकी मस्ती मॉर्निंग में।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मानेगा कोई नहीं, लेकिन कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स होता है वेरी गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अपने आप को ना यार, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 20-30 मिनट्स का ब्रेक विदाउट स्क्रॉलिंग। ज्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट नर्वस सिस्टम को स्ट्राइक करता है, नैनों को भी थोड़ा रिलैक्सेशन होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अपने आप को वो छोटा सा ब्रेक दिया करो यार, नैनों को भी बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। रिलैक्स फॉर सम टाइम, 20-30 मिनट के बाद फिर वापस चले जाना ऑनलाइन। तो अभी के लिए नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं जो लवली लिसनर्स जो मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंजॉय दिस नेक्स्ट वन, दिस इज फॉर यू।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: वैसे लड़की बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बस कभी कभी सर घूम जाता है। गर्ल्स को कितने सारे काम संभालने पड़ते हैं, वर्क, घर, लुक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ। तो अगर कभी मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है तो बस समझ जाओ कि लड़की को जज नहीं, थोड़ा रिलैक्स करने दो। तो आप भी रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आपके लिए अमेजिंग गाने लाते रहेंगे मस्ती मॉर्निंग शो में।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।

को भी बसा लिया हमने आरएम टू रेडियो मस्ती पर। थैंक यू कनेक्टेड रहने के लिए। अभी के लिए मैंने मनी आपसे इजाज़त लेती हूँ, मुझे जाने का टाइम हो गया है, जल्दी मिलेंगे। लेकिन आप यहीं पर रहना कनेक्टेड, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली है पूनम रेट्रो रिदम के साथ। सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती पर ही।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से. अदिति आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. सदिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कल एक रात्रि भोज के लिए उन्होंने सभी राष्ट्र और सरकारी नेताओं का स्वागत किया. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए. इस मौके पर अपने संदेश में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अकेले चलकर कोई भी देश अपनी पूरी क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा, बल्कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संयुक्त सहयोग के साथ ही उचित तरीके से प्रगति कर सकेगा. मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा. इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे. उद्योग और व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार सरकार की प्राथमिकता है देश में पेट्रोलियम पैदावारों की आपूर्ति का आश्वासन लंबी अवधि के लिए हो. मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रीमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी थी. इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा. ये नियम छात्रों की मौजूदगी में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे. जहां कुछ अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने माता पिता से संपर्क कैसे करें. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हंगेरी में एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के उलट जाने से 12 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल बताए गए हैं. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस चालक को नींद आ गई थी, जिसके कारण से उसने बस पर से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा पेश आया. उसे हिरासत में लिया गया है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. हमारा आपका साथ भी आज के लिए यही तक था. अगली बार तक के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
0: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
4: RM2 Radio.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:07 हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। आज ठंड है, धूप भी कहीं कहीं गायब लग रही है, लेकिन ये प्यारी सी हवा यस मौसम को बड़ा ही खूबसूरत बना रही है। तो अगर आप जहाँ भी हैं थोड़ा मौसम का मजा लीजिए, और ये जो गाने हैं ना सदाबहार गाने, इनका भी मजा लीजिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और शुरू हो रहा है रेट्रो रिदम सिर्फ आपके लिए RM2 रेडियो मस्ती पर। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है या प्यारा सा, मैं ये नहीं कहती रेगुलर मैसेज करो, कुछ स्पेशल लिखो किसी अपने के लिए, जिसके लिए भी आप मैसेज करें, बस बताइए क्या कहना है। आपका नंबर तो पता ही है, पर फिर भी हम बता देते हैं 5499124 पर। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:20 हो चुके हैं। कहते हैं ना, खुश नज़ारे प्यार की मंजिल भी, जो हमारी मंजिल है वो है आपके मैसेजेस। और ऐसे जब मैसेजेस आते हैं तो बहुत खूब आते हैं। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, यलीश जी का साथ दे रहे हैं फ्राइड राइस की प्लेट के साथ और कह रहे हैं इंजॉय कीजिए RM2 रेडियो मस्ती। बट मैं कैसे प्लेट के साथ में इंजॉय करूँ, खाना तो मुझे यहाँ खाना है। बट कोई बात नहीं, आप इंजॉय कीजिए क्योंकि आप इस समय खा रहे हैं। इंजॉय कीजिए खाने की प्लेट को भी और गानों को भी। फिया जी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है। बिल्कुल हम चलाएंगे। ज्योति जी, आशनी, रेखा, सुरेखा, AMD मधु फैमिली के लिए एक पहले से गाने की फरमाइश के साथ बस सबको ये बोल रही है हैप्पी मंडे। क्या बात है आपको भी जी। जीना जी पेरिस से साथ दे रही हैं और सभी को कह रही हैं हर हर भोले मंडे आ गया, यानी कि भोले बाबा का दिन आ गया। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच हमारे लिए मैसेज करने के लिए। बट हम भी आपको बोलते हैं हर हर भोले और इंजॉय कीजिए गानों को साथ में एक प्यारे से गाने की जो आपने फरमाइश की हम ज़रूर चलाएंगे। वीना जी नवल फौज से साथ दे रही हैं और हबी देव के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। बिल्कुल हम चलाएंगे आपके लिए भी जी। साथ में बर्थडे विशेस आ रही हैं टू लवली सचिन बिचू, डारन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा और पूरी अपादू फैमिली की तरफ से। और हम कह रही हैं प्लीज आप स्पेशल कुछ उनके लिए जरूर बजाइएगा। तो ऐसा हो सकता है आप कहें और हम ना बजाएं, स्पेशल उनके लिए।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:33 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ और यहाँ पर हम हैं आपके साथ। कहते हैं ना, जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, सड़क पर हैं, नज़र रखिए चेहरे पर स्माइल, और गाड़ी में गाने को थोड़ा सा, उसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती जो आपके साथ साथ चलता है। बट साथ में आपको बोलते हैं कि हमारे पास इतने सारे खूबसूरत गाने हैं, लिस्ट हमारे पास होती है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आपके गाने चलाएं। अगर आपको भी कोई गाना आपका कोई स्पेशल है जो बहुत टाइम से आपने नहीं सुना और आप चाहते हैं कि इस आवर में ये गाना चले, आप ध्यान रखिएगा कि दोपहर का टाइम है और ऐसा गाना भेजिए जो मेरा भी दिल करे अरे भाई चला ही देते हैं। तो 5491294 आपको ये नंबर पता है, इसमें आप अपना मैसेज भेजिए और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हम आपको बस इतना ही बोलेंगे, ड्राइव कीजिए चेहरे पे स्माइल और गुनगुनाते गुनगुनाते पहुंच जाइए अपनी मंजिल पे।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

रेट्रो रिदम। 12:44 हो चुके हैं दोस्तों, और ये जो गाने चलते हैं ना, मुझे लगता है कि इसकी एंड तक जो म्यूज़िक है ना, वो भी सुनने का मन करता है, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने उस टाइम की धुनें बनाई, तरंगे बनाई, उस तरीके से जो लय होती है, हर तरीके से डायरेक्टर चाहे आर्टिस्ट उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखते थे, और उसके बाद लास्ट होता था सिंगर की बारी। सिंगर कहते हैं ना कि वो अपनी जो आखिरी जो सोच होती है, चाहे डायरेक्टर की, एक्टर की, उनका स्टाइल, उनकी बातें, उनके जो इमोशंस होते हैं, उन सब को लपेट लुपुट के एक कहते हैं ना इकट्ठा करके कहीं पर रख देता था और कहता था कि अब सुनो जो मैंने गाया है। तो ऐसे इस तरीके से हमारे

0: से थे किशोर कुमार जी, किशोर दा कह लीजिए, हमारे वो सिंगर जिन्होंने इतने गाने बनाए और एक एक गाना मतलब अनोखा है और आज भी हर किसी के दिल में जब सुबह से लेकर रात तक बजता है। जो भी कभी आप किशोर कुमार का पहली बार सुबह सुबह गाना सुन लोगे ना, तो वो आपको एहसास देगा कि पूरी रात तक वो कहीं ना कहीं आपके सेंसेस में बजता रहता है। पता नहीं क्यों, पर ये मुझे एहसास होता है। चाहे रफ़ी साहब की बात करें, किशोर कुमार की, लता मंगेशकर जी की, आशा मंगेशकर, तो ये ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी अलग ही बात है। और पुराने गानों में अगर इनका फ्लेवर थोड़ा सा डाल दिया जाए तो बस फिर बात ही क्या। तो चलिए भाई, हम थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस भी लेंगे, पर आपको इतना ही कहते हैं स्पेशली कि चाहे आप कोई भी गाने सुनो, अगर आपका मूड अच्छा है, आपके चेहरे पे स्माइल है और साथ में आप अपने काम कर रहे हैं, मतलब कोई बीच में पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बस आपके हाथ चलते रहने चाहिए, चेहरे पे स्माइल रहे, काम करते रहो, जो भी कर रहे हैं, तो बस इंजॉय कीजिए गानों को। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti
3: kya hai is baar suriya

0: बारह बजकर 55 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी रेट्रो रिदम और आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। हम मस्ती तो बहुत कराते हैं आपको, पर आपके मैसेजेस के साथ आपको सिर्फ इतना बोलते हैं कि एंजॉय कीजिए अपने गानों को और अब थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। सर अभी चलिए लेते हैं दो तीन प्यारे प्यारे से मैसेजेस, हमें साथ दे रही हैं कथपोन से आयशा, तेजल, तनवीर, रायना, रायन, मनीषा, वर्षा, अनिष्ठा, तरश, कमला, गंगा बिसन जी, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे। गीता, सीता, भोला राम और सातो बनारस से साथ दे रहे हैं। सायरा बानो अब्दुल जी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहती, तेरे बिन जिया नहीं जाता, क्या करें। क्या बात है भाई, ऐसे ही प्यार और विश्वास साथ साथ चलाते रहें, हम भी आपके बिना जी नहीं पाते, क्या करें। आपके मैसेजेस जब पढ़ते हैं अच्छा लगता है। विश्वानी धुमन जी साथ दे रही हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। बहन इंदिरा, शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता जी के लिए हम बिल्कुल चलाएंगे। प्रिया जी साथ दे रही हैं और कह रही हैं हैप्पी नागपंचमी टू ऑल, आज बहुत ही प्यारा दिन है तो प्लीज़ मेरा गाना ज़रूर चलाइएगा। बिल्कुल हम चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: रेट्रो रिदम, आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: टाइम चेक दोपहर के 1:00 बज रहे हैं। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सादिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कल एक रात्रि भोज के लिए सभी राष्ट्र और सरकारी नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए। इस मौके पर अपने संदेश में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अकेले चलकर कोई भी देश अपनी पूरी क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा, बल्कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संयुक्त सहयोग के साथ ही उचित तरीके से प्रगति कर सकेगा। मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। उद्योग और व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार सरकार की प्राथमिकता है कि देश में पेट्रोलियम पैदावारों की आपूर्ति का आश्वासन लंबी अवधि के लिए हो। मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रीमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी थी। इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा। ये नियम छात्रों की मौजूदगी में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे। और विदेश में रूस के कार्यवाहक गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन के बेलगोद क्षेत्र में रात भर हुए मिसाइल हमलों में 6 लोग मारे गए और 4 घायल हो गए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musti.

रेट्रो रिदम। 1:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ रेट्रो रिदम। रेट्रो रिदम नाम ही इतना प्यारा है ना, क्योंकि यहाँ पे बातें होती है रेट्रो की, पुरानी बातें। तो कहते हैं ना कि जब आप अपनी फैमिली फ़ोटोज़ निकाल कर देखते हैं, किसी की बेल बॉटम होती है, किसी के बड़े से कॉलर होते हैं, हस्बैंड्स के हो गए फैमिली में, उस ज़माने का भी तो फैशन होता था ना। सिर्फ ये तो नहीं है कि आज का ही फैशन सबसे अच्छा रहा हो, या उस ज़माने में आपका जो वो फैशन था बड़ी बड़ी बिंदी लगाना, और एक शायद हो सकता है आजकल के बच्चों को थोड़ा सा लगे कि अरे क्या आपके टाइम में ये फैशन था, ऐसा कैसे होता है। पर उस ज़माने के लोगों के लिए वो फैशन था। बहुत आई थिंक सो जॉर्जेट की साड़ी डाली जाती थी, या वो एक वो सिल्क टाइप से होती थी, प्रिंट होता था उसमें, हमारे मम्मा भी डालते थे और हम बोलते थे कि अरे कैसे कैसे ये डिज़ाइन थे आपके। पर जब हम देखते हैं 90s में तो वही डिज़ाइन हमें लगता है आजकल में, अरे ये तो बहुत पुराने ज़माने का डालते थे। तो ऐसे पुराना ज़माना बदलता रहता है, चलता रहता है। पर अगर आप जिस भी एरा में पैदा हुए हैं, मैं नहीं जानती आप

0: क्योंकि पूरा मॉरिशस इस समय सुन रहा है और बहुत लोग बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। जिस भी एरा में आप पैदा हुए हैं, आपके टाइम का जो फैशन है या आपकी एल्बम है, एक बार बाहर निकालिए, अपने पुराने लोगों को याद करिए, इंजॉय कीजिए, और जो काम कर रहे हैं उनको बोले काम करो, पर अपनी बातों को, अपने वो यादों को फिर से ताज़ा करो, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti.

रेट्रो रिदम। 1:20 हो चुके हैं और मुझे एहसास है कि आपको कितना असर पड़ता है जब आपके मैसेजेस पढ़ लिए जाते हैं बट आपका गाना उस टाइम नहीं चल पाता है। बट क्या करें, इतने सारे लोग करते हैं कॉल।

बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, साथ में थोड़ा सा समय अपने आप को भी देना होता है। और कई बार हम बहुत लोगों से प्यार करते हैं पर कह नहीं पाते, तो अगर बिना मतलब बिना किसी टेंशन के किसी अपने को मैसेज करके उनका हाल चाल पूछना या उनसे बस इतना ही कहना कि अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस ये कहते रहिए, इंजॉय करते रहिए गानों को। ऐसे ही हमारी प्यारी सी हमारी दोस्त हैं विश्वानी धुमन जी, इस समय उनको भी चैन मिलेगा जब उनका गाना चलेगा। तो इंजॉय कीजिए अपने गाने को, और साथ में ही एक प्यारा सा गाने की फरमाइश की है हमारी रुपेश, किसने की है भाई, हमारे को मिष्टी, आज किसका है, मेवीना का बर्थडे है जो कि आज 3 साल की हो गई हैं। बट उनको गाना तो नहीं समझ आएगा, बट उनकी मामा जो हैं और वो कह रही हैं कि मुझे बस दिल कर रहा है कि ये गाना सुनने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये कब बोले प्रॉपर तरीके से ये गाने को, मुझे अच्छा लगेगा। स्पेशली मिष्टी, हिमाक्षी मौसा, आशीष मौसी, रेशमा, मामा संध्या एंड पापा रूपेश, इन सभी की तरफ से ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार उस प्यारी सी बच्ची को। और हम भी यही कहेंगे, हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो, पर हम तो अपने उस जो लेकर आते हैं हम उसको ऐसे जाने नहीं देते, क्योंकि इतना प्यारा सा बच्चा, हमें फोटो भी भेज सकते हैं आप अगर उस बिटिया रानी की, पर ये हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर हर।

0: उसके बाद
1: अरे अरे भाई, अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठा। हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देश द्रोहियों की हम तमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये शब्द तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:47 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। हम हर मूड के लिए आपके लिए गाने लेकर आते हैं, सुबह से लेके रात तक। आपको बस सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, हंसते रहें, हंसाते रहें और साथ जुड़े रहें RM2 रेडियो मस्ती के साथ। और आज भाई शुरू हो गए हैं स्कूल कॉलेजेस और बहुत सारे दादा दादी नाना नानी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बस घर सूना सूना लग रहा है। पर कई बहुत खुश है, उनके भी मैसेजेस आए हैं, कह रहे हैं आज इतना सुकून मिल रहा है ना, अपने हिसाब से काम कर पा रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ सबकी फीलिंग्स ऐसे ही होती है, कई पेरेंट्स खुश हैं, कई उदास हैं, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज करना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। कहीं पर हंस सकते हैं तो हंस लीजिए, और अगर उनका इंतज़ार कीजिए, अभी आप आएंगे तो आप उनके लिए अच्छा सा लंच बना के रखिए, थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ स्पेशल कुछ बना दीजिए, क्योंकि वो भी बड़े थक के आए होंगे, उनको भी इतने दिनों की एक ब्रेक मिली होगी और उसके बाद आज से फिर से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंजॉय कीजिए, जैसे कि मुझे भी जाना पड़ेगा और थोड़ी देर में परी को आना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पर हम आपको इतना ही बोलेंगे जो इस समय अभी रेस्ट कर रहे हैं उनके लिए हम बोलते हैं रेस्ट छोड़ दो, क्योंकि आने वाले हैं वो गाने जो आपको थोड़ा सा बना देंगे मूड के साथ में। ये गाना प्यारा सा है, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेकिन मूवी से है और एक हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट आई है जगमनी जी की, कह रहे हैं प्लीज़ ये गाना ज़रूर चलाइएगा। तो बिल्कुल हम जगमनी जी आपके लिए चलाने जाने हैं। और नेक्स्ट गाना होगा राजन जी के लिए भी, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हैं फ्लक्स से।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musty.
1: तो दोस्तों आज के लिए रेट्रो रिदम में मेरे साथ यहीं तक था। उम्मीद है गानों और बातों ने आपके दोपहर को थोड़ा सा खूबसूरत बनाया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे। अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा परी का। एंजॉय कीजिए गाने को।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं विधिमा. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को नमस्कार. सादिक, आज 17 अगस्त को दक्षिण गणराज्य के डर्बन शहर स्थित डर्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अपने राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 46वां आम शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है.

0: 46वें सादिक शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महत्वपूर्ण खनिज परिवर्तन के माध्यम से मजबूत टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकीकरण है। सादिक के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय के रूप में ये शिखर सम्मेलन इलाकाई सहयोग, एकीकरण और विकास के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं तय करता है। सादिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भाग ले रहे हैं। मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। उद्योग और व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार सरकार की प्राथमिकता है कि देश में पेट्रोलियम पैदावारों की आपूर्ति का आश्वासन लंबी अवधि के लिए हो। मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रीमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी थी। इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा। और विदेश में जून में हस्ताक्षरित ईरान अमरीका समझौता ज्ञापन बातचीत के गतिरोध के बीच समाप्त हो गया है। IRGC कमांडर ब्रिगेडियर जनरल के अनुसार नई अधिकतम अवरोध नीति के तहत ईरान का रक्षात्मक रुख अब आक्रामक रुख में बदलने के लिए तैयार है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, आपके दर पर हम भी चले आए वंस अगेन आपके म्यूजिकल हम सफर बनकर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। 2:06 हो गए हैं मंडे आफ्टरनून। आज आवाज थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन जैसे हम कहते हैं आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। सो मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक। कुछ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं, कुछ गाने ऐसे जो शायद आपके जहन में कहीं छुप कर बैठे हैं, कुछ गाने ऐसे जो लेटेस्ट हैं लेकिन फिर भी स्पेशल है, एंड ऑफकोर्स बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स जो हम 24/7 आप तक पहुंचाते रहते हैं। स्पेशल टाइम होता है 2 से लेकर 4 बजे तक, जब आपसे दिल से दिल का कनेक्शन बनता है। म्यूजिकल डोज हम आप तक पहुंचाते हैं, एंड जैसे हम कहते हैं आपका प्यार आपका साथ हमारे लिए वेरी खास वेरी स्पेशल। सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप।

0: Credible Swati Mishra. Join us on the 22nd of August 2026 at 8 p.m. at the MGI Auditorium for a soulful evening of music and devotion. Tickets available on Otayo. For more info, call on 5710-0808.
1: To Radio Musti.
2: So, well, some beautiful songs आपके लिए on RM2 Radio Musti. अभी के लिए 2:22 हो रहे हैं. मैं हूं परी आपके साथ. आज आवाज थोड़ी सी नासाज and I am very sorry अगर आप ये आवाज नहीं पहचान पा रहे. लेकिन well, the beat down की अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे and कुछ प्यारे गानों से आपकी इस afternoon को सजाएंगे. So everyone who's connected हमारे साथ, wishing you a wonderful afternoon and well, it's time for your Bombay Talkies. परी का साथ है दिन के 4 बजे तक.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: And well, ladies and gentlemen, 2:32 हो रहे हैं. मैं हूँ परी आपके साथ. बात करेंगे एक्टर पुलकित सम्राट की. जो एक्टर पुलकित सम्राट है, इन दिनों फैंस के बीच चर्चाओं में है और वो अपनी फिल्म्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी सेहत को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर फैंस को इस बारे में कुछ जानकारियां दी. पुलकित सम्राट ने मंडे को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट यानी कि आज ही के दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर बताया कि वो काफ़ी बीमार है. पुलकित इतने बदले हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें पहचानना अब मुश्किल हो गया है और इस स्टोरी के जरिए पुलकित ने फैंस को बताया कि वो इन दिनों काफ़ी बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में भर्ती है. एक्टर ने बताया कि बीते कुछ दिनों से वो मलेरिया से पीड़ित है और एक्टर ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उनका वजन काफ़ी कम हो गया है. पुलकित ने तस्वीर शेयर कर जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों से उनका 2.5 किलो वजन जो है वो कम हो गया है. हालांकि एक्टर ने पॉजिटिविटी पर बात करते हुए कहा कि अपना वजन फिर से बैलेंस कर लेंगे. इसी के साथ पुलकित ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो बेहद कमजोर नजर आ रही हैं. सो अभी के लिए तो उनके फैंस की ओर से वी विश हिम अ क्विक रिकवरी. और आजकल कुछ माहौल ही ऐसा चल रहा है जहां पर हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बीमार पड़ रहे हैं. आवारापन रिलीज़ हुई और वहां भी खबर आई थी दैट फिल्म की रिलीज़ डिले हो गई क्योंकि दिसंबर में इमरान हाशमी जो है उनके साथ भी एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से वो शूटिंग नहीं कर पा रहे थे. एंड पुलकित सम्राट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया जिसकी वजह से उनका 2.5 किलो वजन कम हो गया है. सो चलिए अभी के लिए तो हम उन्हें विश करते हैं क्विक रिकवरी. एंड एवरी वन हुज़ कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ गुड म्यूज़िक कंटिन्यूज़ ऑन रेडियो मस्ती. परी का साथ एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप रेडियो मस्ती पर. सो नॉट टू फॉरगेट एक चीज जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, वो है आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल. यू कैन ऑलवेज सेंड अस ऑन 5499-1294. गुड म्यूजिक के साथ आपको एंटरटेन रखेंगे, आपकी आफ्टरनून को खास एंड स्पेशल बनाएंगे, म्यूजिकल एंड मैजिकल बनाएंगे. फॉर नाउ पुलकित सम्राट की बात हुई है सो उन्हीं के फिल्म का ये गाना लेकिन विद अ ट्विस्ट. एंजॉय दिस वन.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: For the first time in Mauritius, experience the magic of bhajan jamming live with the incredible Swati Mishra. Join us on the 22nd of August 2026 at 8 p.m. at the MGI Auditorium for a soulful evening of music and devotion. Tickets available on Otayo. For more info, call on 5710-0808.
0: RM2
1: Radio Mustini.

तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 जो हाल ही में रिलीज हुई है और वो अब काफी सफल भी हो गई है। इस बीच सुनने में आ रहा है कि आवारापन 2 के मेकर्स अब इमरान को लेकर उनकी हिट फ्रेंचाइजी जन्नत का तीसरा पार्ट बनाने का सोच रहे हैं और इस पर कुछ अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। फिल्म आवारापन 2 की सफलता के बाद विशेष भट्ट और उनकी टीम काफी खुश नजर आ रही है। इस सफलता को देखते हुए मेकर्स ने अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी जन्नत का तीसरा भाग बनाने की प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी है। प्रोड्यूसर ने हाल ही में अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ इशारा किया है। निर्माता विशेष भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी उनके फैंस को दी। उन्होंने बताया कि आवारापन 2 के बाद अब जन्नत 3 का काम शुरू करना चाहता हूं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है मगर इसे अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। हम इसकी कास्ट के बारे में सोच रहे हैं और अभी इसका अनाउंसमेंट करना शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सो थोड़ा सा इंतजार। लेकिन अब इमरान हाशमी के फैन सुपर एक्साइटेड कि क्या अब जन्नत 3 उन्हें देखने को मिलने वाली है। अब काम तो शुरू हो रहा है इसी फिल्म को लेकर, सो लेट्स वेट एंड वॉच के करना होगा कितना इंतजार। वैसे गुड सॉन्ग्स के लिए यू डोंट हैव टू वेट एनी मोर बिकॉज आप आए हैं एट द परफेक्ट प्लेस। यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ, बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाती हैं और 2 से लेकर 4 बजे तक आपको एंटरटेन करते हैं विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स। सो ये है फ्रॉम द फिल्म आवारापन 2, फैजल अली खान की आवाज। फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ, एंजॉय करें हमारे गानों को।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी. सभी को नमस्कार. सादे का आज दक्षिण गणराज्य के डर्बन शहर स्थित डर्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अपने राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 46वां आम शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है. 46वें सादिक शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महत्वपूर्ण खनिज परिवर्तन के माध्यम से मजबूत टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकीकरण है. सादिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भाग ले रहे हैं. मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा. इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे. और कीमतों के संबंध में शर्तों पर हर साल फिर से बातचीत की जा सकती है और चर्चाएं समय सीमा से 2 महीने पहले शुरू होंगी. और यदि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव समाप्त हो जाते हैं तो मॉरिशस बातचीत पर वापस लौटने और कीमतों की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का नोटिस भी दे सकता है. मंत्रिपरिषद ने पिछले शुक्रवार

0: को एसटीसी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ये सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट करने की मंजूरी दे दी थी। माइकल सिक्वेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होने पर बेहतर मूल्य शर्तें हासिल करने की कोशिश करने से पहले मुख्य उद्देश्य आपूर्ति की गारंटी देना है। और विदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप अब उसके इतिहास का सबसे घातक बन गया है। 15 मई को इस प्रकोप की घोषणा के बाद से वायरस के कारण कुल 2,325 लोग मारे जा चुके हैं, जो देश के 2018-2020 के प्रकोप के मरने वालों के आंकड़े से अधिक है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 3 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: सो एवरी वन कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ 3:26 एंड यहाँ पर लेकर आए हैं यो बॉम्बे टॉकीज आफ्टरनून टाइम है और आपकी आफ्टरनून को थोड़ा सा म्यूजिकल एंड थोड़ा सा मस्ती भरा बना रहे हैं गाने ऐसे जो आपकी आफ्टरनून में थोड़ा सा तड़का लगा रहे हैं सो हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून मंडे का ये जो टाइम है थोड़ा सा डिफिकल्ट आफ्टर द वीकेंड वेल बैक टू वर्क एंड आफ्टरनून टाइम में आपके इस जो वर्क टाइम है इसे हम थोड़ा सा स्पेशल बना रहे हैं For everyone who's connected Radio Masti ke saath, enjoy this one.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, इमरान हाशमी की फिल्म आवारा पन की हम बात करेंगे। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म औंधे मुंह गिरी थी जब ये 2007 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म का म्यूजिक काफी हिट रहा और बाद में ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। 14 अगस्त को इस फिल्म का सीक्वल आवारापन 2 रिलीज हुआ और सावन के महीने में रिलीज हुई इस फिल्म इमरान हाशमी को कह सकते हैं कि बढ़िया शगुन देकर जा रही है। और सावन के महीने में जब ये फिल्म रिलीज हुई है तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई भी हुई है। सो आई कैन से दैट्स द गुड लक जो इमरान हाशमी को मिला है। और आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस पर टकराव सनी देओल की बंटवारा 1947 से हुआ, मगर ओपनिंग डे से ही इमरान की फिल्म रेस में काफ़ी आगे चल रही है। आवारापन 2 की ओपनिंग डे पर डबल डिजिट में कमाई करते हुए 22 करोड़ जुटाए थे, यानी कि ओपनिंग डे में इस फिल्म ने 22 करोड़ रुपए कमाए। और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यानी कि दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा 33.75 करोड़। कल संडे को इस फिल्म का कलेक्शन रहा 26 करोड़। और फिल्म का 3 दिन का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 81.75 करोड़ हो चुका है। वहीं आवारापन 2 का 4 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन इट्स ओवर 100 करोड़, यानी कि इस फिल्म ने 4 दिन में ही 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया। और पहले ही दिन से सुपर डुपर हिट हो गई दैट्स इमरान हाशमी की आवारापन 2। वैसे जैसे सब कहते हैं कि लेजेंड्स वेटेड फॉर 19 ईयर्स, 2007 के बाद अब ये फिल्म 2026 में रिलीज हुई है और कह सकते हैं दैट इंतजार का फल काफी मीठा रहा। लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है एंड कह सकते हैं इट्स अ कमबैक फॉर इमरान हाशमी। इससे पहले जो भी फिल्म उनकी रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही थी एंड एवरीवन वाज सेइंग दैट मे बी इमरान हाशमी का जो टाइम है इट्स ओवर, लेकिन उन्होंने सभी को गलत प्रूव किया है एंड इमरान हाशमी इज बैक विद अ बैंग विद हिज फिल्म आवारापन 2। चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। आवाज साथ नहीं दे रही फिर भी खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। सो मैं हूं परी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। थोड़ी ही देर में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: Oldies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, that was Vidya Vox for you. Or well, friends, next track ke saath, it's time for Pari to say goodbye. Jaate jaate aapke messages, aapke dedications. Kehte hain, hello Pari, behna, how are you? Main toh bilkul theek hoon. Aap kaisi hain? Umeed karte hain, you are enjoying your time. Lalita Jeetan kehti hain, just back home from work and listening to the show. Aur saath hi gana dedicate kar rahi hain for all colleagues, all friends and for full family, Jeetan Parivar, jo saath de rahe hain Love on Chassis. So agla gana aap sabhi ke naam. And well, yahan par gaanon ko enjoy kar rahi hain hamari pyari si Roshni. Welcome aapka on the waves of RM to Radio Masti. Thodi si theek, thodi si tabiyat nasaaz, lekin aapka pyar, aapka saath hamare liye sab kuch hai. So thank you for the love, thank you for the support. Gaana hoga aapke naam Roshni and sending loads of love to you. Devisen saath de rahe hain Lal Mati se, aap bhi hamare saath jud gaye hain. So gaana hoga aapke naam. And well, yahan par Shyam Devichand saath de rahe hain aap, dedicating gaana for your friends Sukhdev, Malu and Paybe se jitne bhi aap के loved ones connected हैं गाना उनके नाम साथ ही यहाँ पर मनीष अमर राजा बानी सभी परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं खूबलाल परिवार सो गाना आपके नाम एंड सचिन बिच्चू हमारा साथ दे रहे हैं पुद्रदो विलेज से और दारिन श्वेता रविश पिशा लवशा नपारू परिवार उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे सो हैव अ ग्रेट टाइम साइनिंग ऑफ विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक और चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ परी तो चली आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़ तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ

0: Thank you so much for sadene ke liye on RM2 Radio Masti. Check your time, it's 4 p.m.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Masti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार विदिमा के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार गिनीशा. सभी सुनने वालों को नमस्कार. सदैक आज दक्षिण गणराज्य के डर्बन शहर स्थित डर्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अपने राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 46वां आम शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुराम भाग ले रहे हैं. 40वें सदैक शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महत्वपूर्ण खनिज परिवर्तन के माध्यम से मजबूत, टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकीकरण है. मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा. इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे. और जहां तक कीमतों के संबंध में, शर्तों पर हर साल फिर से बातचीत की जा सकती है और चर्चाएँ समय

सीमा से 2 महीने पहले शुरू होंगी और यदि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव समाप्त हो जाते हैं तो मॉरिशस बातचीत पर वापस लौटने और कीमतों की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का नोटिस भी दे सकता है। और विदेश में रविवार दोपहर को एथेंस के पास एक ग्रीक द्वीप पर लगभग एक साथ 2 आग लगने से 2 लोगों की मौत

30 दिन का नोटिस भी दे सकता है। और विदेश में रविवार दोपहर को एथेंस के पास एक ग्रीक द्वीप पर लगभग एक साथ दो आग लगने से दो लोगों की मौत।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: बिल्कुल जी, रफ्तार वाइब शुरू हो चुकी है आपकी और हमारे बीच में आना और M2 रेडियो मस्ती और मैं हूँ गिनिशा जसाट देने आ गई हूँ इस खूबसूरत से फिल्मी राइड्स में। जहाँ दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में 4:05 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ योर वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गिनिशा का प्रणाम। कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स। ऑलरेडी मंडे 17 अगस्त 2026 टू ऑल ऑफ इंडियन लवली लिसनर्स, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से स्वागत है इन दिस ब्यूटीफुल शो जहाँ पे कुछ खूबसूरत गानों का सिलेक्शन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। मीठी मीठी बातें करूंगी आप लोगों के साथ। बिल्कुल जी, आपके फीलिंग्स का ख्याल रखने के लिए हम आ गए हैं। सो स्पोर्ट्स न्यूज एंड ट्रैफिक लेटेस्ट अपडेट्स अभी लेकर आए हैं एंड ऑफ कोर्स विदाउट फॉरगेटिंग इन योर लवली शो योर रफ्तार वाइब्स एवरी आफ्टरनून यू डू गेट योर फैशन टिप्स और भी बहुत कुछ है आपका साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए जी, जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ ऑन आवर M2 रेडियो मस्ती एंड किक स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल वीक विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक्स।
3: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा छलावा थी।

RM2 रेडियो मस्ती वेलकम चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:14 हो चुके हैं यू आर लिसनिंग टू गिनीश राइट नाउ एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट टाइम वैसे अभी वीकेंड जो है बीत चुके हैं एंड आई रियली होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स वैसे आज मंडे है टू किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीक वी हैव द ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन फॉर यू माय डियर लवली पीपल आउट देयर सो म्यूजिक लवर्स आई डोंट नो हाउ वाज योर मंडे लेकिन मंडे ब्लूज यस हो जाता है बट आई डोंट वांट टू हियर अबाउट दैट आई जस्ट वांट यू टू से दैट टुडे आई हैड अ गुड डे एंड going to be good by the rest of the week. तो चलिए जी फिलहाल के लिए टू दोस्त जो अपने लैपटॉप्स बंद कर चुके हैं ऑफिस में ताला लगा चुके हैं निकल चुके हैं टू हिट द रोड टू गो बैक होम ड्राइव केयरफुली ड्राइव सेफली और बस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि आई हैव गॉट द नेक्स्ट वन स्पेशली फॉर यू एंड यू गोना ग्रूव ऑन दिस वन

I really hope that you guys are really loving these beautiful गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. वैसे तो याद दिलाया ना हमने आपको कि आज मंडे 17 of August है. So to all those celebrating their birthdays, I just want to wish you a magical birthday on our end to Radio Masianda. To all lovely couples celebrating out their wedding anniversaries, hello G, happy to get a nice to you and lots of love and happiness हमारे मस्ती परिवार की तरफ से. And to all drivers, जरा आराम से गाड़ी चलाना. And to all those जो अभी काम पे हैं, so कुहाज to you my dear. और अगर कुछ लोग घर पहुंच गए हैं, नॉट टू फॉरगेट कि आज स्कूल का पहला दिन था तो सारे बच्चे तो पहुंच ही गए होंगे. आई होप कि ज्यादा थके हुए नहीं हो. ऑफ कोर्स पूरे एक महीने के बाद स्कूल जो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने हम पेश कर रहे हैं. अनाउंसिंग टू रेडियो मस्ती.

टाइम बीटा चला जा रहा है 4:32 हो चुके हैं यू आर ट्यून ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन है यस यू आर लिसनिंग टू इग्निशन राइट नाउ जो आपका साथ देंगे इस रफ्तार वाइब्स में जहां पे हम आपको लेके जाते हैं फिल्मी राइड्स पर एवरी आफ्टरनून 4 बजे से लेकर 7 बजे तक

0: वैसे क्या सीन है आज, बिल्कुल एनर्जी फुल ऑन तो होनी चाहिए ना. सो आज का दिन सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक वाइब है मेरे दोस्त, एक फीलिंग है और एक मोमेंट है जो हम सब मिलके क्रिएट कर रहे हैं. वैसे देखा जाए तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, है ना. बट एक चीज कभी मत भूलना, आपकी एनर्जी आपकी पावर है. वैसे अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए. लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है. आप क्या करोगे ये आपकी स्टोरी है. सो आज की जो नेगेटिविटी है उसको साइड में रख दीजिए और डाउट्स को जरा म्यूट कर लीजिए और अपने गोल्स को वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम जो है फुल पे चला दीजिए और रेडियो मस्ती का साथ यूं ही देते रहना. ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप मूविंग. और हमेशा याद रखो मेरे दोस्त, सीन चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो लाइफ में, अपनी वाइब कभी लो नहीं होनी चाहिए. जस्ट लाइक दिस ट्रैक.
1: You're listening to Radio Masti.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
5: वेल म्यूजिक लवर्स, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर इंटरव्यू रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए बॉलीवुड की दुनिया से निकल के थोड़ी देर के लिए लेके जाएंगे आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ, अरविंद जी के साथ। गुड आफ्टरनून टू यू।
6: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। सो द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, आज लीग चैंपियनशिप के लिए एक मैच है, कार्डिफ सिटी का मुकाबला रेक्सम से होगा। वैसे लीग चैंपियनशिप फ्राइडे से शुरू हो गई है और आज भी एक मैच है। प्रीमियर लीग शुरू होगा इस फ्राइडे से, आर्सेनल की एंट्री होगी और आर्सेनल की एंट्री तो हो गई, धमाकेदार एंट्री, दैट वाज इन द कम्युनिटी शील्ड, जिसमें मैनचेस्टर सिटी की खूब सिटी बजी, खूब रफा दफा किया आर्सेनल ने 3-0। इस पर बात करेंगे बाद में। और क्लब फ्रेंडलीज भी निर्धारित हैं। स्पेन के ला लीगा में एक मैच है यहाँ पर, डिपोचवो का मुकाबला एल्चे से। कोपा इटालिया में पिसा, एम्पोली, सासुओलो, सिसेना, क्रिमोनेसे, सांपडोरिया, पालेर्मो, लेचे। इसी प्रकार डेनमार्क, फिनलैंड, मेक्सिको, मेजर लीग सॉकर, पोर्टुगल प्रीमियर लीगा, सर्बियन सुपर लीगा, ये इन सभी में मैच आज के लिए रखे गए हैं। कल भी काफी मैच हैं, खासतौर पर यूईएफए चैंपियंस लीग प्ले ऑफ तक आ गए, अब टिकट दाव पे हैं डिनामो ज़ाग्रेब, विकिंग, फेनेरबाचे, लियों, लेव्स्की, एके एथेंस। ये प्ले ऑफ में से जिसकी जीत होगी वो ग्रुप स्टेज में जाएगी, चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में। तो ये तीन मैच, फिर और एक मैच होगा यूईएफए चैंपियंस लीग प्ले ऑफ में, और चार मैच ये हैं सेल्टिक, एलएएसके, शेवा, सबा, नेक, बोडोग्लिम्ट, स्लोवान, सेलिए। तो अब सीरियस मैटर शुरू हो रहा है फॉर द चैंपियंस लीग। यूईएफए यूरोपा लीग के प्ले ऑफ भी खेले जाएंगे, ये थर्सडे यानी गुरुवार के लिए रखे गए हैं। ट्रांसफर बाजार में भी बहुत कारोबार होने लगा है। मैनचेस्टर सिटी 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर 18 साल के बुआदी को साइन करना चाहता है, मोरक्को का मिडफील्डर अयूब बुआदी। प्रीमियर लीग साइड इस डील को कंक्लूड करना चाहता है और पैसे तो मिल गए हैं जब रोड्री को बेचा गया बार्सिलोना के साथ। तो इसका दाम, 18 साल का लड़का है, उसका दाम होगा 85.6 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। समर वर्ल्ड कप में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 5 मैच खेल पाया मोरक्को के लिए, मोरक्को की टीम जो क्वार्टर फाइनल में गई थी, और लील के चैंपियंस लीग जीत में जो रियल मैड्रिड के खिलाफ हुआ था 2024 में, उसने अनाउंस किया था ऑन दी बिग स्टेज, इसलिए सिटी उसे साइन करने के लिए तैयार हैं। बाकुला को लेकर क्या चल रहा है, अभी तक कुछ खास नहीं है। बाकुला जो आना चाहता है लिवरपूल में, लेकिन पेरिस सैन जर्मेन अभी उसे इतने सस्ते में नहीं देना चाहता। लिवरपूल ब्रैडली बाकुला को पेरिस सैन जर्मेन के स्क्वाड में नहीं रखा गया था फ्रेंच सुपर कप में, जिसमें लॉन्स के खिलाफ हार हुई थी। इधर टोटनहम हॉटस्पर का गोलकीपर गुग्लियेमो विकारियो वो यूवेंटुस में जा रहा है लोन पर। सऊदी अरब की प्रो टीम अल हिलाल पेड्रो नेटो को साइन करना चाहता है, पर उसके लिए चेल्सी 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मांग रहा है। अभी 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी ने एस्टन विला के मोर्गन रॉजर्स को साइन किया। अब ब्रैडली बाकुला को भी वो साइन करना चाहता है। चेल्सी के समुंदर में खिलाड़ी भरे जा रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या होगा ये सीजन शुरू होने पर ही पता चलेगा। क्रिकेट, श्रीलंका में श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच पहले टेस्ट मैच में

0: आज तीसरे दिन का खेल हुआ और कह सकते हैं एडवांटेज टीम इंडिया, क्योंकि श्रीलंका की टीम अभी 178 रन 178 रन पीछे हैं भारतीय टीम के विशाल टोटल के पीछे। श्रीलंका की टीम ऑल आउट 284 और इसमें जडेजा 3 विकेट ले पाया। सो अब भारतीय टीम की बारी होगी, भारतीय टीम 178 रन की बढ़त को और आगे ले जाना चाहेगा और चौथे दिन का खेल है, पांचवें दिन का खेल भी होगा, एडवांटेज इंडिया कह सकते हैं। और फाइनली बात करेंगे रीजनल लेवल पर, कल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेटॉन्ग टूर्नामेंट लगी घोकायू में, जिसमें काफ़ी टीमों ने भाग लिया, 26 मेल कैटेगरी और 26 वुमेन कैटेगरी में, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मैच रहे, अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे। फाइनली मेल कैटेगरी में पुरुष वर्ग में रिवेजुरांपा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टीम बेल्वी मोरेल की टीम की जीत हुई और महिला कैटेगरी में पॉम्प्रेमूस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टीम की जीत हुई। आदिसे को बधाई फॉर दिस वंडरफुल टूर्नामेंट। और ऐसे ही रीजनल लेवल पर जो कुछ होता है हम रेडियो मस्ती RM2 और MBC रेडियो टीवी पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग RM2, टेक केयर, बाय बाय, आई विल कैच यू टुमारो।
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco, fin lanceau extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds par 100 roupies. Des pieds par 4 pieds par 295 roupies.

0: RM2 Radio Musti.
1: Well, guys, welcome in the second hour of this beautiful show, and that's your Raftar Vibes, your filmy rides on Radio Musti. 5:14 ho chuke hain. Wishing all of you a very good afternoon. Namaskar aur Ganesha ka pranam. Umeed karte hain that you guys had a good day, and well, abhi hai full on. तैयारी में हो टू गेट बैक होम. जी हाँ दोस्तों, जो घर पहुंच चुके हैं हम, तो कहेंगे आराम से बैठ जाइए, जस्ट टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, एंजॉय योर मी टाइम, और उसके बाद यू गेट बैक टू सम हाउस वर्क. लेकिन उससे पहले अच्छे अच्छे गाने सुनना पड़ता है ना, जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, बस यूं ही साथ देते रहना, और 5491294 पर यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशन, यानी इफ यू नो समवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे, सम स्पेशल डे ऑफ द एंड यू वुड लव टू मेक देम फील स्पेशल. So this is the number 5499-1294. Send it to me right now, right away, your dedications, your dil ki baat hamari zubani.
2: You're listening to a Radio Masti.
3: Sunte raho.
4: Koi jo mila to mujhe aisa lagta tha jaise meri sari duniya mein geeton ki rudh aur rangon ki barkha hai, khushboo ki.

खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आरएमटी रेडियो में से. थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए एंड फॉर लिसनिंग टू अस. हे म्यूजिक लवर्स, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए जी अभी के लिए लेके जाएंगे आपको स्ट्रेट अवे हियर ऑन द रोड्स, यानी योर ट्रैफिक अपडेट्स. तो चलिए जी ट्रैफिक वॉच के जरिए आपको हम बता दें कि अगर हम देख रहे हैं, अगर आप पोर्टलिस की तरफ से निकल रहे हो फ्रॉम द कैपिटल टू गो टू द नॉर्थ एंड इवन टेकिंग द साउथ डायरेक्शन, तो आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है और अमेजिंग बात है ना, आज तो स्कूल भी शुरू हुआ है बट स्टिल ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, इट्स मूविंग. एंड चलिए जी अगर प्लास दाम के बारे में हम बात करें तो आई कैन सी द कार स्टिल मूविंग, यस. एंड प्लेन लूजों से लेकर अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो द रोड इज वेरी वेरी क्लियर एंड यू कैन ड्राइव केयरफुली. जहाँ रोसो और प्लेन लूजों से लेकर अगर साउथ की तरफ यानी कि रेजवी की तरफ आप आ रहे हो, सो आई कैन सी आउट ऑफ कार्स मूविंग टावर्ड्स रेजवी बट स्टिल मूविंग, आई वोंट से स्लोली बट मूविंग फ्लुएंटली. एंड चलिए जी दे रूज फ्लाई ओवर, अगर आप उस तरफ जा रहे हो क्रॉसिंग फ्रॉम द कैपिटल गोइंग टू टे रूज फ्लाई ओवर, द ट्रैफिक इज वेरी फ्लूइड. एंड रेजवी अगर आप पहुंच चुके हैं तो जस्ट टू रिमाइंड यू एंड लेट यू नो कि आई कैन सी इट्स अ वेरी क्लियर ट्रैफिक टुडे. लगता है कि आज तो हर जगह ट्रैफिक काफी क्लियर है.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 तो चलिए जी 5:38 हो चुके हैं और फिलहाल के लिए आई गेस इट्स टाइम टू चेक इट आउट कि किसने किसको याद किया है। नाउ RM2 रेडियो मस्ती द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू द एंटायर संपत फैमिली जिन्होंने बड़े प्यार से मैसेज भेजे हैं ऑन 549-9194 पर। सो संपत फैमिली फ्रॉम NS फ्लो ऑन द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड आई हाई मेरी जॉन इतने प्यारे प्यारे पिक्चर्स आपने भेजे हैं गैटोज के। सो टू द एंटायर टीम हैविंग अ वंडरफुल टाइम थैंक यू सो मच। तो चलिए आपका वीकेंड अच्छा रहा ब्लेस मंडे टू एवरीवन and a great word ahead, great week ahead to everyone enjoying le goûter with some lovely selection Nashrin from Vakwa thank you so much my beautiful and barwag bidese ji ek agla ga ye jo agla ga na hai wo khas kar aapke naam sare staff of Flak Indian Oil filling station working right now hello ji courage to you and happy birthday to Miss Chinya hey Miss Chinya wishing you happy birthday to you jo kaam karti hai school jo port plus mein hai and best wishes from all colleagues teachers jo Mimi Sonia Kina Puni Sita Pia Ashley Ravina Vinay Pinky Birana Shanisa Lalita and Ajitin Madivar parivar jo hain from Laventure they are all wishing you a magical birthday the next one to you my dear Arshad from Rebecca Kitelevse and I just wanna dedicate the next one to wish a very happy birthday to mere papa. Kiske papa? Mere nahi. Unke papa, unke special day hai. Unki darling papa Suresh Chanan ko hum wish karna chahenge a magical birthday. So happy birthday to you. Wishing you a splendid day full of love, blessings, happiness. Aapki khoobsurat si biwi Mimi and bache Bhavish, Diksha, Akshay aur Chanan parivar ki taraf se jo La Rosa ke rehne wale hai. Hello, good afternoon. Nice songs. Thank you so much. Aur bhi kuch likh sakte the Nisha. So the next one goes out to you, Nisha, and keep on enjoying those beautiful and nice songs.
2: You're listening to Radio Masti.

0: RM2 Radio Musti.
1: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Such beautiful and lovely गानों का selections लेकर आए हैं specially for your music lovers जो साथ ही रहे हैं तो दोस्तों अगर बस में बैठे हो और हमारा साथ दे रहे हो so the entire the rest of this beautiful selection goes out to you my dear फिलहाल के लिए चलिए जी just like every afternoon in your after vibes your filmy rides you get your fashion tips और आज हम बात करेंगे about shoes के fashion tips के बारे में so chunky sneakers अगर आप पहनना पसंद करते हो तो मैं आपको याद दिला दूं it's full on baller streetwear vibe जो baggy cargos के साथ oversize t-shirt के साथ एकदम फायर लगता है वैसे हाई टॉप स्नीकर्स जो होते हैं प्रॉपर हिप हॉप फील देते हैं और जीन्स कार्गोज या ओवरसाइज पैंट्स के साथ मस्त लगते हैं और वाइट स्नीकर्स जो सबके पसंद होते हैं क्लीन और क्लासी अगर आउटफिट ऑलरेडी कलरफुल है तो वाइट शूज बैलेंस कर देते हैं और वैसे ब्लैक स्नीकर्स भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं पहनना सो इट्स सिंपल बट पावरफुल ऑल ब्लैक या डार्क आउटफिट के साथ किलर कॉम्बिनेशन सो रेट्रो स्नीकर्स थोड़ा कूल एफर्टलेस एंड फैशनेबल लुक चाहिए तो परफेक्ट होता है और स्टेटमेंट शूज अगर आउटफिट है काफी सिंपल है तो शूज को हाईलाइट बनाओ और एक बोल्ड कलर या यूनिक डिजाइन पूरा लुक जो है चेंज कर सकता है बिल्कुल जी तो बस आप रोज आफ्टरनून को ऐसे ही हमें फॉलो करते रहना ऑन आवर टू रेडियो मस्ती फॉर योर फैशन टिप्स
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स

0: खूबसूरत गानों का सिलेक्शन चलता ही रहेगा आफ्टर द समाचार ऑफ 6 PM। तो चलिए जी, बस यूं ही साथ देते रहना, थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: नमस्कार, सोमवार 17 अगस्त 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। डर्बन में आयोजित 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सादिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम भी शामिल हुए। आज से स्कूलों में नया नियम लागू, जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र अब स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि फोन अपने पास रखे जा सकते हैं, बशर्ते वे बंद और बैग में हो। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 दिन तक के स्कूल निलंबन जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पोटरी की बेल एंड रिमांड कोर्ट में 10 महीने से हिरासत में बंद मलागासी व्यवसायी मामी हावा तुमांग की सशर्त जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। उस पर फ्रांस को लीची निर्यात में 90 मिलियन यूरो से अधिक का लाभ कमाने और ईरान के बोइंग 777 विमान बेचने के मामले में $5 मिलियन की रिश्वत लेने का आरोप है। GEF स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम ने मॉरिशस और रोड्रिक्स में सतत विकास पर केंद्रित 7 संगठनों के लिए 22 मिलियन रुपए जारी किए हैं, जिसमें आसिम की कीटनाशक ट्रेसेबिलिटी और वी रिसाइकल की प्लास्टिक रिसाइकलिंग की नई पहलें शामिल हैं। नाग पंचमी का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। ये पर्व नाग देवता की पूजा, भगवान शिव की आराधना, प्रकृति के प्रति सम्मान और परिवार की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। आज से ही मराठी समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी पर्व के लिए व्रत रखना शुरू कर रहे हैं। सादिक के सदस्य देशों के 16 नेता 46वें राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए इस सोमवार को डर्बन में एकत्र हुए। प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम भी इस बड़े इलाकाई सम्मेलन में अपने समकक्षों के साथ उपस्थित रहे, ताकि खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य एक और अधिक मजबूत सादिक का निर्माण करना है। अब्दुल बुला की करुणा लालू।
4: डर्बन में सादिक की 16 सदस्य देशों के नेता सोमवार सुबह 46वीं सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम भी शामिल रहे, जिनका स्वागत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने डर्बन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया। सादिक की अध्यक्षता संभाल रहे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय समुदाय के भविष्य पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी राष्ट्र नेताओं का आभार व्यक्त किया। औपचारिक समारोह के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति का भी विशेष उल्लेख

0: किया गया।
1: फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस वी वेलकम ऑनरेबल डॉक्टर नवी चंद्र रामगोलन प्राइम मिनिस्टर।
0: लचीले टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकरण के तहत आयोजित इस 46वें शिखर सम्मेलन में बुनियादी ढांचे के विकास तथा कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में बदलाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण को और मजबूत करना है।
2: We must turn our borders into bridges and we must turn our resources into industries and we must turn our youthful population into a powerful democratic dividend that will benefit all the peoples of Southern Africa. And we must turn this solidarity that has been so strong over the years into a shared prosperity. And this summit must therefore inspire a new era of regional integration that delivers dignity, opportunity, and the hope of every citizen of Southern Africa.
0: इससे पहले सादक के कार्यकारी सचिव एलियास एमपेडी मागुजी ने आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सादक की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया, खासकर एक ऐसे समय जब दुनिया अनेक चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रही है।
3: Our ambition must be to move beyond the export of raw materials and position SADC as a globally competitive center for beneficiation, value addition, manufacturing, innovation, and indeed the industrialization we are pursuing.
0: उद्घाटन समारोह में अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ तथा सादक के पदमुक्त अध्यक्ष जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगागुआ के संदेश भी शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र में अधिक एकता और एकजुटता का आह्वान किया। उद्घाटन समारोह का समापन जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका को सादक की अध्यक्षता के आधिकारिक हस्तांतरण के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों और अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा के बीच नेताओं ने कई क्षेत्रों में प्रगति करने की अपनी इच्छा जताई। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, शांति और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूती तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिणी अफ्रीका की आवाज़ को और मजबूत करना।
4: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने रविवार शाम डर्बन में 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ साथ प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों और विशेष अतिथियों के सम्मान में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा आयोजित स्वागत रात्रि भोज में भाग लिया। डर्बन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शाम को पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी वीना रामगुलाम के साथ हॉल में प्रवेश किया और फिर इलाके के अन्य नेताओं के साथ अपने स्थान पर बैठे। इस बैठक के औपचारिक स्वरूप से परे इस शाम ने सादिक के सदस्य देशों के बीच सहयोग, एकजुटता और एकता के संदेश को रेखांकित किया। ये एक ऐसी गतिशीलता है जिसके तहत इलाके के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि खाद्य, समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार तथा व्यापार को बढ़ावा देना के लिए साझा प्रतिक्रियाएं दी जानी है। आज से छात्रों ने तीसरी तिमाही के लिए स्कूल का रास्ता पकड़ा और छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक वे अब अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि नए नियमों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन वे छात्रों को इन्हें अपने पास रखने से नहीं रोकते हैं, बशर्ते वे बंद हो और बस्ते में रखे हुए हों। इन नियमों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 दिन तक का स्कूल से निलंबन यानी सस्पेंशन भी शामिल है। कल यानी मंगलवार को अमेरिका के सोशल मीडिया इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक की शुरुआत होने जा रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा को कैलिफोर्निया की अदालत में उन आरोपों का जवाब देना होगा जिनमें कहा गया है कि समूह ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को युवाओं के लिए लत लगाने वाला बनाया है।
0: लगातार स्क्रॉलिंग, आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो का ऑटोप्ले, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये सुविधाएं अब आम हो चुकी हैं, लेकिन आज ये बड़ी

0: कानूनी बहस के केंद्र में हैं। मामले की सुनवाई ऑकलैंड में हो रही है और इसके करीब 7 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। 4 अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी ने आरोप लगाया कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म इस तरह डिज़ाइन किए हैं ताकि युवा यूज़र उनसे लगातार जुड़े रहें और उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें गुमराह किया गया है। कुल 29 राज्य इस सामूहिक कानूनी कार्रवाई में शामिल हैं। राज्य सरकारें सैद्धांतिक रूप से $1.4 ट्रिलियन तक के हर जाने की मांग कर रही हैं। साथ ही वे फेसबुक और इंस्टाग्राम के काम करने के तरीके में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी के अदालत में गवाही देने की उम्मीद है। दूसरी ओर मेटा ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उसने हाल के वर्षों में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अपने उपायों को मजबूत किया है। ये मुकदमा इसको लेकर एक अहम मिसाल कायम कर सकता है कि युवा उपयोगकर्ताओं पर अपने उत्पादों के प्रभाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
1: मॉरिशस को सितंबर के अंत तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला ईंधन मिलना शुरू हो जाएगा। पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच सहयोग के तहत एसटीसी और भारतीय कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते पर इस गुरुवार को हस्ताक्षर किए जाने हैं। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि आने वाले वर्षों के लिए देश की आपूर्ति सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। उनको सुनते हैं।
2: मंत्री माइकल सिक्वेन ने कहा, गुरुवार को इस पर हस्ताक्षर किए गए और इंडियन ऑयल मॉरिशस सरकार को पदार्थ सप्लाई कर पाएगी। सितंबर महीने के अंत में इसकी शुरुआत होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, ये 5 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट है। 2006 में जिस तरह इस पर दस्तखत किए गए थे, उस वक्त भारतीय सरकार के साथ एक अन्य G2G था। उस समय मंगलो था, भारतीय सरकार ही कंपनी चुनती है। दाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट 12 महीनों का है, लेकिन 2 महीने पहले ही समझौता बातचीत शुरू की जा सकती है। कह सकते हैं कि इस पर गौर करना है। समझौता बातचीत के लिए 2 पहलू हैं। उदाहरण के लिए व्याप्त लड़ाई 30 दिन है, तो कह सकते हैं कि एक नोटिस दे सकते हैं ये कहते हुए कि लड़ाई थम गई है, तो समझौता बातचीत कर सकते हैं। भारतीय सरकार के साथ तय कॉन्ट्रैक्ट से क्या मॉरिशनों के लिए कोई बदलाव होगा? इस प्रश्न के जवाब में मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि सबसे अहम बात है सप्लाई सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर लड़ाई के दौरान जहाज के रवाना होने में कठिनाई हो रही है, ऐसे में लड़ाई खत्म होने पर सुनिश्चित करेंगे कि दाम बेहतर हो।
1: और जैसे कि पहले हम आपको बता रहे थे कि आज से छात्रों ने तीसरी तिमाही के लिए स्कूल का रास्ता पकड़ा और छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक वे अब अपने मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी। सिलवाना पाहेमामन की इस रिपोर्ट में विवरण रजनी पिकर का है।
3: इनका आगमन सभी घरों में हुआ, लेकिन स्कूल में अब इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। स्कूल में इस सेमेस्टर की शुरुआत में स्कूली पढ़ाई के दौरान मोबाइल के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इस डिजिटल पोज का कई तरह से मतलब निकाला जा सकता है।
4: Les quartiers, une photo, moi je suis camarade sur le livre et que je suis depuis là-dedans. Tout le temps, je suis spécialisé à faire ma révision, ma délavée, je suis petit peu de ma note. D'ailleurs, mon gars, bon résultat, ça existe à cause potable. Je vais adapter mon bruit d'une autre façon et que la case, mon cas, ça vit mon potable.
5: Comment je viens de l'école, mon potable, je écoute la musique et tout.
6: Bon, pour moi, pour de la part, je pas autant. Comme moi, mon camarade de l'école et moi, un peu actif dès que je fais de l'école, comme moi, je joue volleyball, moi, je joue football.
7: Vu que nous pouvons vivre dans le monde digital, moi, mon budget pour le son, tout ça, beaucoup de professeurs, they tend to share the information, the homework that we get online.
3: Head girl Dhyana ne interview ke samay ise le liya tha. मोबाइल फोन को उसके मालिक को लौटाया गया और उसे वापस बैग में रखा गया और ये यही रहेगा कुछ समय के लिए।
8: Mais il y a des stores, mais il y a des humains.

0: ça même tout meilleur qui tu nous adapter à tout qui tu veux.
1: Exactement.
2: Parole. स्कूल के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, इस मनाही की बदौलत अध्यापकों को थोड़ा सा समर्थन मिल पाएगा जिन्हें ऐसी स्थितियों में सामना करना पड़ रहा था जब छात्रों और बच्चों का ध्यान बढ़ रहा था।
3: Avant quand il n'avait pas de portable, nous avions l'élève pour nous. Avec le portable, c'est tout le monde extérieur qui rentre dans la classe. Quand on a l'élève en classe, on veut que l'élève soit là avec nous, avec toute son attention braquée sur les cours qu'on fait.
2: ये मनाही अब से सभी छात्रों के लिए नियम है, बशर्ते कि अध्यापक की मंजूरी मिले। या तो मोबाइल फोन का प्रयोग पढ़ाई के लिए किया जा रहा हो या फिर चिकित्सा कारणों को लेकर। इन नियमों का पालन न करने पर सजा का भी प्रावधान है।
4: L'élève utilise donc le mobile device pour la première fois. Donc il y a un avertissement verbal qui est donné à l'élève. Une deuxième fois, le portable est retenu à l'école. Les parents sont informés en écrit. L'élève reçoit un avertissement en écrit aussi et le mobile device est retourné aux parents. Si l'élève utilise le mobile device pour la troisième fois, l'élève n'est plus autorisé à porter son mobile device pour le reste du trimestre. Et quatrième fois, on garde les mêmes étapes. Ce qui change ici, c'est que l'élève va subir une suspension temporaire de 5 jours consécutifs.
2: ये तीसरा सेमेस्टर स्कूली वर्ष का सबसे छोटा सेमेस्टर है, लेकिन सबसे अहम भी। सालांत की परीक्षाओं की भी अवधि है। अध्यापकों को उम्मीद है कि मोबाइल फोन को थोड़ा अलग रखने पर बच्चों के नतीजों में सुधार आने में मदद मिलेगी। मॉरिशस के कॉलेजों में 87,000 से अधिक छात्र हैं और प्राथमिक स्कूलों में कोई 82,000 बच्चे।
5: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और मामी खावातुमांग के बचाव पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई एक नया चरण पार कर रही है। पोटली स्थित बेल एंड रिमांड कोर्ट में आज सुबह बचाव पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई जिसमें 10 महीने से अधिक समय से हिरासत में बंद मालागासी व्यवसायी की सशर्त जमानत की मांग की गई है। एक ऐसी सुनवाई जिसकी शुरुआत फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पूछताछ के साथ हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामी खावातुमांग पर आरोप है कि उसने मुख्य रूप से अपने पद का दुरुपयोग करके फ्रांस को मडागास्कर की लीची के निर्यात के तहत 90 मिलियन यूरो से अधिक का लाभ उठाया। ये भी आरोप है कि उसने मडागास्कर से ईरान को 5 बोइंग 777 विमानों की बिक्री के सिलसिले में रिश्वत के रूप में $5 मिलियन प्राप्त किए थे। काविंता पिसाव, करुणा लालू।
6: मामी खावातुमांग, जिन्हें 24 अक्टूबर 2025 से हिरासत में रखा गया है, ने अपनी रक्षा टीम की जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई मेलगोज स्थित हाई सिक्योरिटी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखी। 56 वर्षीय मलागासी कारोबारी का प्रतिनिधित्व वकील कुशल लुबिन कर रहे हैं। फ्रांसीसी वकील एक्टो बेनोदिनी भी बचाव पक्ष की सहायता के लिए अदालत में मौजूद रहे। मामी खावातुमांग की बेटी और उनके दामाद ने भी अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया। मजिस्ट्रेट फारूक नातिया के समक्ष एफसीसी के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन परमहंस आलियो ने एफसीसी की ओर से पेश वकील त्रिशूल नागा के सवालों के जवाब दिए। परमहंस आलियो के अनुसार एफसीसी की जांच जटिल है। आरोपी पर कई कथित अपराधों का संदेह है जिनमें पद का दुरुपयोग, हितों का टकराव, भ्रष्टाचार, प्रभाव का दुरुपयोग, धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य आरोप शामिल हैं। एफसीसी की जांच के कई पहलू हैं। इनमें मडागास्कर से ईरान को 5 बोइंग 777 विमानों की बिक्री, लीची का निर्यात, गेहूं का आयात, अंटानानारिवो में एक राजमार्ग का निर्माण और माराहाई परियोजना शामिल हैं। बोइंग विमानों की बिक्री वाले मामले में जिसमें मामी खावातुमांग पर भ्रष्टाचार का शक है, एफसीसी को अमेरिकी एफबीआई का सहयोग मिल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामी खावातुमांग को कथित तौर पर $5 मिलियन की रिश्वत मिली थी ताकि वो राजनीतिक अधिकारियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस बिक्री को अंतिम रूप दिलाने में मदद कर सके। जांच का एक अन्य पहलू लीची निर्यात क्षेत्र में संभावित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा है। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार सुजात समूह के सीईओ और अंतरिम लाभार्थी मामी खावातुमांग ने कथित तौर पर मॉरिशस में पंजीकृत एक कंपनी के माध्यम से 2017 से 2025 के बीच मडागास्कर से फ्रांस को लीची के निर्यात के सिलसिले में 92 मिलियन यूरो का लाभ प्राप्त किया। जमानत पर रिहाई की याचिका पर सुनवाई का दूसरा दिन कल निर्धारित

0: हैं। वकील कुशल लोबिन द्वारा एफसीसी के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच के विभिन्न पहलुओं पर जिरह यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाने की उम्मीद है।
1: जीएफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम ने मॉरिशस और रोड्रिग्स में 7 संगठनों का समर्थन करने के लिए 22 मिलियन रुपए जारी किए हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सतत विकास पर केंद्रित हैं। नई पहलों में कीटनाशकों की पता लगाने की क्षमता पर असिम की एक पहल और प्लास्टिक के बर्तनों के रिसाइकलिंग के लिए एनजीओ वी रिसाइकल की पहल शामिल है। मीकान पुनापनायकन की रिपोर्ट पेश है।
0: इस विशेष रूप से तैयार किए गए कंटेनर में रखे गए प्लास्टिक के डिब्बों को नया जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। खुद मरम्मत और फिर उपयोग किए गए उपकरणों की मदद से रिसाइकलिंग की पूरी प्रक्रिया विकसित की गई है। ये पहल वे रिसाइकल एनजीओ की है। स्टेफानी जाके कहती हैं, कुछ किस्म की पैकेजिंग के साथ शुरुआत की थी। तब मॉरिशस में रिसाइकल करने वाले कोई भी इन्हें नहीं ले रहे थे। हमने एक हल ढूंढा, ये उद्योग कायम किया। कई चरणों में इन प्लास्टिक का शोधन करते हुए इनसे वस्तुओं का निर्माण किया, टेबल आदि। वे रिसाइकल की तरह 6 अन्य संगठनों को भी जेफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम से वित्तीय सहायता मिली है। इन सभी पहलों के केंद्र में सतत विकास है।
2: Notre projet c'est d'étudier le dynamisme de la population
0: de कहते हैं, हमारी परियोजना इन जानवरों की आबादी पर अध्ययन करना है, इनकी संख्या, इनके विकास पर जानकारी प्राप्त करना और काशालों की सेहत का भी पता लगाना। एहसान डल्लू ने कहा, हमारी परियोजना रोड्रिग्स में एक नेचुरल रिजर्व से संबंधित है। करीब 15 हेक्टेयर देशज जंगल का संरक्षण किया जा रहा है, जहां 30,000 पौधे पैदा किए जाएंगे। वहीं मॉरिशस उपभोक्ता संघ आसिम ने कीटनाशकों की ट्रेसिबिलिटी से संबंधित एक परियोजना शुरू की है। जे अंचलम ने कहा, सब्जियों पर स्वतंत्र जांच की जाएगी, बाजार में भी कीटनाशक दवाओं की मात्रा की जांच करेंगे। इस नए चरण के लिए 22 मिलियन रुपए की राशि जारी की गई है। उन संगठनों के लिए हैं जो सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Best part of the whole story is that these projects are scalable.
0: आपका भाटिया ने कहा, ये परियोजना विकासशील है, छोटे स्तर पर सीमित नहीं, विस्तार की संभावनाएं हैं, टिकाऊ आधार पर निर्माण होता है। 30 वर्षों में जेफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम मॉरिशस में अब तक 200 परियोजनाओं को वित्त पोषित कर चुका है।
1: गणेश चतुर्थी के त्यौहार के अवसर पर कल और आज पूरे द्वीप में नाग पंचमी की पूजा आयोजित की गई। ये पूजा मराठी समुदाय के लिए उपवास की शुरुआत का प्रतीक है। हमारी टीमें रगजी परिवार और बाशेरी मराठी मंडली में मौजूद थीं, जहां इस त्यौहार को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। सुमेरा अकबर अली, प्रियंका हरी।
4: राम वर्धनम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायति सर्व विघ्नम प्रशान्तये।
5: आनंद पिछले 26 सालों से अपने यहाँ गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं, इसलिए आज उन्होंने नाग पंचमी की पूजा की। वे इस साल भी अपने यहाँ गणपति बप्पा का स्वागत करेंगे। एक महीने में गणपति पधारेंगे, उन्हें इसी स्थान पर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, इसलिए हर साल ये पर्व मनाते हैं। नाग देवता की पूजा करने से सुरक्षा की कामना की जाती है। पूरा दिन प्रार्थना करने के बाद इस मूर्ति का विसर्जन किया गया और लंबोदर भगवान का स्वागत करने की तैयारी शुरू हो गई। दिन भर प्रार्थनाएं की जाती हैं, शिवलिंग और नाग देवता का अभिषेक करते हैं और शाम को नागदेव की मूर्ति का विसर्जन करेंगे।
6: नाग पंचमी इसलिए किया जाता है कि परिवार में खुशी समृद्धि ये सब लाते हैं। नाग पंचमी की तिथि शुरू हुआ रविवार को फ्री को और ख़त्म सोमवार को फ्री 29 को। ऐसे माना जाता है कि उस दिन पर हम गणेश चतुर्थी के लिए व्रत शुरू करते हैं और यहीं पर हम गणपति बापा को निमंत्रण भी देते हैं कि आप हमारे घर पर आइए।
5: आज से 40 दिनों तक व्रत धारण किए जाएंगे और

0: विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। आज से रोज प्रार्थना करेंगे, 40 दिनों के दौरान व्रत रखेंगे।
1: La prière peut commencer de aujourd'hui. Nous pouvons faire la prière 40 jours. Nous pouvons comme nous bapa, comme petit. À partir d'aujourd'hui, préparation peut commencer.
0: आज से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आरती, भजन, कीर्तन और झाकरी के लिए रोज रियाज करेंगे।

0: Nous célébrer le Nagpan Samhita dans le mois de Shravan, le cinquième jour de la lune, Shukla Paksh, ça veut dire la lune.
1: Shukla Paksh ki panchami tithi ko Nagpanchami hai. Is din se vrat dharan karne lagte hain aur Bhadrapad ki chaturthi ko Ganesh chaturthi manayenge.
0: Tum dans le mois de Bhadrapad chaturthi.
2: Nous avons l'occasion de faire Nagpanchami qui symbolise.
1: हमें बहुत गर्व है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मंदिर में नाग पंचमी मनाने का अवसर मिला। गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और 15 सितंबर को विसर्जन विधि की जाएगी।

और अब अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात बादल छाए रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर वर्षा होगी। कभी कभी ऊंचे इलाकों पर सामान्य से जोरदार वर्षा हो सकती है। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल देश भर में बारिश होती रहेगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। फिर भी कल समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा। कल सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:27 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड नवे मिल त्रियोले में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के जनाब बाई निजाम सुकुमिया इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके घर रॉयल रोड नवे मिल त्रियोले से उठाकर प्लेंडी पपाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। एसएसओ रोड ईलो कौंजियाबल में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती बुलक पैदाइशी नाम पुनीत और जो बंधु नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति श्री राधा किशन बुलक के घर एसएसओ रोड ईलो कौंजियाबल से उठाकर कौंजियाबल की शमशान भूमि दी जाएगी। कमीशन टुमारो एट 10 AM। सीवेन चिनियन रोड गुडलैंड्स में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री मदिमुतु चिनियन जो मुगेश चिनियन नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले गायक थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विलेन चिनियन के घर सीवेन चिनियन रोड गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। स्वामी शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कमलावती राधा लक्ष्मी रचिया पैदाइशी नाम भी सिसर और जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके पति श्री शिवन रचिया के घर स्वामी शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर अली ब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रेलवे रोड हाईलैंड्स में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल सुलिक जो सूर्यदेव नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले क्यूपिप नगर पालिका में पुराने कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बसंती सुलिक के घर रेलवे रोड हाईलैंड्स से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 11 सिटी से आशा दीपिने में 25 साल के 25 ईयर्स ओल्ड के श्री केसावन वीरेन जो केसावन

0: नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके पिता श्री वीरेन कृष्णा के घर नंबर 11 स्थिति से आशा दीपी ने से उठाकर गौन हो जाली की शमशान भूमि दी जाएगी। कमीशन टुमारो एट 11 AM। रामभाव स्ट्रीट विलनोमीबर्ग में 37 साल के 37 years old के श्री कमलेश आदिन गादू जो मोगाम्बो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ कल दिन के 2 बजे उनकी मां श्रीमती लक्ष्मी आदिंगादू के घर रेम्ब्रंट स्ट्रीट विलनोमीबर्ग से उठाकर तोंगबोमीबर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2 PM। शिवाला रोड मर्द ऑस्ट्रेलिया में 46 साल की 46 years old की श्रीमती शास्त्री कावलेसा पैदाइशी नाम बिगन और जो वीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ कल दिन के 1 बजे उनके घर शिवाला रोड मर्द ऑस्ट्रेलिया से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। मंडप लेन मिडलैंड्स में 63 साल के 63 years old के श्री राज नोयन जो बुबुनु नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके घर मंडप लेन मिडलैंड्स से उठाकर मिडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। मोरा पिट रिविया में 64 साल के 64 years old के श्री सिपा साध सिंह मंगला जो अजीत नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। वे भी 24 बंगाली स्ट्रीट लातू के निक पॉइंट साबले रहते थे। उनके अर्थ कल सुपहर 3 बजे मोहापित सित्रिविया से उठाकर सिपाही भूले वाले दिप्रैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं और जहां पर बाहों के दरमियां प्यार मिलता है वहां पर बस दिल के दरमियां ऐसे ही जज्बात का खुलासा होता है। तो चलिए ऐसे ही जज्बातों का खुलासा आप करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम तो आए हैं आप लोगों के दिल का हाल सुनने के लिए और हम दिल का हाल सुनाने के लिए भी आए हैं। वेल 7:07 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग। थोड़ा सा हंसिए मुस्कुराइए बिकॉज मंडे इवनिंग ऑलरेडी आ चुका है, कल ट्यूसडे और यू आर गेटिंग रेडी टू गो बैक टू वर्क। एक डेली रूटीन है जो आपने सेट करके रखा है। कुछ लोग अपने वीक को प्लान करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अनप्लान वीक्स आर द रियली द बेस्ट। तो आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि हमेशा आपको प्लानिंग करना चाहिए या फिर ऐसे ही फ्लो में बहते चले जाना चाहिए? जो भी है हम आपके साथ हैं, डेफिनेटली डू लेट अस नो कि किस तरीके से आप अपने मंडे इवनिंग को स्पेंड कर रही हैं। वेल इट्स अ टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल कूल म्यूजिक, गाने ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं

सब्र से ही तो इश्क महरूम है और हम तो कहते हैं कि प्यार का दूसरा शब्द प्यार का दूसरा अल्फाज बस सब्र ही है क्योंकि जितना

0: आप प्यार में इंतजार करते हैं वो प्यार उतना ही और खूबसूरत होता जाता है और वो रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। 7:19 टू ऑल दोस हैविंग देयर मील राइट नाउ आपको विश करेंगे बन अपेची शुभ आहार एज यूजुअल एंड चलिए कुछ म्यूजिकल डिनर आप ले रहे हैं तो व्हाई नॉट इस समा को और भी खूबसूरत करने के लिए और इस माहौल को और भी आशिकाना बनाने के लिए We have some more beautiful music. चलिए यहाँ पर किसी ने कहा है Hi dear, hope you're doing great. Please dedicate the next song to Jugs from someone special. Want to tell him I love you with all my heart. क्या बात है क्या बात है चोरी छुपे किसी से प्यार किया जा रहा है And maybe उनको पता भी नहीं है कोई बात नहीं अगर आप इस वक्त सुन रही हैं हमें तो चलिए कोई है जो आपसे चोरी छुपे शायद प्यार करती हैं और इजहार इकरार तो अभी शायद आप नहीं कर पा रही हैं लेकिन आई जस्ट होप कि आप अपनी फीलिंग्स को मन में दबा कर नहीं रखेंगे क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप वेट करते रहेंगे तो इंतज़ार करते करते सही मौका और सही पल आपके सामने से गुजर के निकल जाएगा इसीलिए देयर शुड बी अ बैलेंस इन एवरीथिंग प्यार में इंतज़ार और सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी इंतज़ार नहीं करना है कि बस वो सही मोमेंट आपके सामने से गुजर के निकल जाए सो चलिए आई जस्ट होप कि आप इस पल को इंतजार के पल के बजाय आप इसको प्यार के पल में तब्दील करेंगे और बहुत ही जल्द आप हमसे आपको आप हमें मैसेजेस भेज के यही कहेंगे कि आपने अपने मन की बात बोल दी है सो चलिए द नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर जैक्स फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: अगर आपको लगता है कि दिल थोड़ा सा बदमाश है और ठग भी है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि जब आपको प्यार होता है ना तो सबसे पहले आपका दिल ही होता है जो आपको इसका एहसास दिलाता है और दिल कभी गलत नहीं हो सकता है। इट्स ऑलरेडी 7:37 इन द इवनिंग एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। शायद आप लोग काम पर होंगे एंड नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे और मे बी अभी आप स्लो ड्राइविंग करके घर की ओर बढ़ रहे हैं एंड गाने की रफ्तार के साथ साथ आपने ये भी तय कर लिया है कि बस आराम से गाड़ी चलाना है और उस क्वालिटी टाइम, उस मी टाइम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच दिल से टू ऑल दोज जो अब्रॉड से भी कनेक्टेड हैं हमारे साथ। चलिए ज़रूर बताइएगा कि आप इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं, ज़रूर जानना चाहेंगे। ऑन 5499-1294 इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वेल कहते हैं कि जूरियां ऊपर से बनके आती हैं एंड आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या ये सच बात है या फिर प्यार हमें ऑटोमेटिकली धरती पर आकर ढूंढ ही लेता है जो भी हो प्यार एक बहुत ही प्यारा सा एहसास होता है एंड इसके बारे में किसी को इतना वक्त भी नहीं मिलता है ज़्यादा समझने और समझाने के लिए बस जब प्यार होता है तो जितनी भी समझ है वो थोड़ी बहुत गायब ही हो जाती है चलिए आई जस्ट होप कि अगर इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं और आप प्यार के बारे में सोच रहे हैं तो इतना भी ना सोचे अगर आपको अभी तक अपना समवन स्पेशल नहीं मिला है तो बहुत ही जल्द मिल जाएगा आई एम वेरी श्योर अबाउट इट

0: बिल्कुल दोस्तों, सोना नहीं ना सही, चांदी नहीं, हीरे मोती कुछ नहीं, बस ज़िंदगी में प्यार चाहिए। और ज़िंदगी में जब प्यार मिलता है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी साकार हो गई है। और अगर आपको इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप लविंग योर सेल्फ एंड कीप लविंग दोज अराउंड यू एंड स्पेशली योर नियर एंड डियर वंस। चलिए यहाँ पर एक और मैसेज आया है। योगेश, आप हैं थ्वाबुचित्रियोले से, कहते हैं प्लीज़ दरिके द नेक्स्ट ट्रैक रब वर्गा फ्रॉम द फिल्म बैड न्यूज़ फॉर माई लवली वाइफ सी, आई लव हर विद ऑल माई हार्ट, माई रियल वर्ल्ड एंड You're very amazing and beautiful and thank you so much. It means a lot aapke is compliment ke liye and aap log itne amazing hain, aap log itne wonderful hain ki ye jo khoobsurati hai aap दूसरों में देखते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बाहरी दुनिया में जो आप देखते हैं वैसा आपका मन आपको बोलता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका दिल अच्छा है और उनके जज्बात सच्चे हैं। सो दिल से आपको शुक्रिया आपके इस खूबसूरत अल्फाजों के लिए। एंड कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। इट्स इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है रात्रि के 9 बजे तक।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
4: Radio Musti.

0: अर्ज किया है देर ना हो जाए इसलिए एक मुलाकात बहुत ही ज़रूरी है। एक मुलाकात क्या, बहुत सारे मुलाकातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं प्यार में। कभी ऐसा होता है ना कि हम एक पल में किसी इंसान को जान नहीं पाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एक पल में हमको ऐसा लगता है कि हम उस शख्स को बस पिछले जन्म से जानते हैं और जन्म जन्म से जानते हैं। ये एहसास, इसके बारे में क्या कहें। कहते हैं कि लाइफ वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, और प्यार के जज्बात भी कुछ ऐसे ही हैं। चलिए 8:21 टू ऑल दोज कनेक्टेड हमारे साथ, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर जान और जानू के लिए अगला गाना, और आपके जानू का नाम है मोनू। आज यूजुअल वैन ड्राइव कर रही हैं और रिक्वेस्टिंग द नेक्स्ट गाना स्पेशली उनके नाम। हमेशा आपका मैसेज इनकम्प्लीट आता है, अगर बहुत पॉसिबल हुआ तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी याद कर सकते हैं, नंबर वही है 5499-1294। बात करते करते यहाँ पर एक और मैसेज आया है टीना जी का फ्रॉम फ्लोरियल, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। और आपको बना पिची, यू हैविंग योर डिनर राइट नाउ, बाहर रोमांटिक वेदर है आपके यहाँ, क्या बात है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और साथ में हल्की हल्की बारिशें, वाह क्या बात है, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ऐसे में जब हमारे गाने चल पड़ते हैं ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन। सो नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली आप लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, और आपके लिए भी टीना जी, फॉर ऑल योर फैमिली एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप लोगों के नाम भी ये अगला गाना।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: अगर आपको भी चारों तरफ वही दिखाई दे रहा है या फिर दिखाई दे रही है, उनको एक मैसेज भेजकर जाइए तो बता दीजिए कि आप किस हद तक उनको याद कर रही हैं, उनको मिस कर रही हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल गाना, हर तरफ तू ही दिखे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद से कहते हैं कि बस न जाने कहाँ दिल खो गया। आपका दिल कभी खोता नहीं है, वो किसी पे जाके अटक जाता है। एंड लिटिल डू वी रियलाइज कि जब दिल से हम किसी को याद करते हैं तभी दिमाग का खेल शुरू हो जाता है। मतलब उनको इतना हम याद करते हैं, इतना हम याद करते हैं, कभी हम इतने दुखी भी हो जाते हैं कि बस उनकी याद आ रही है और हम कुछ कर नहीं पा रही हैं। All you can do is send a special message to that special person. Trust me, आपको चांद तारों के वादे नहीं करनी है, बस इतना ही काफ़ी है किसी का दिल जीतने के लिए कि आप उनके लिए वक्त निकालें और

हमेशा जब भी आप उनको याद कर रही हैं उनको बताइए, let them know कि आप के मन में क्या है और आप किस हद तक उनको मिस कर रही हैं।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: सिने में ये दर्द है या फिर एक चुभन है, सो लेट मी टेल यू कि प्यार का दर्द थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा प्यारा होता है। वेल, 8:51 हो चुके हैं और चले इसे खूबसूरत गीत के साथ छोड़े जा रही हैं आपको कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ टिल ऑफ कोर्स 24 आवर्स, तो हम साथ देते रहते हैं। एंड चलिए यहाँ पर हमारे और आपके बीच का जो सफ़र था ये तक तय था एंड हम जा रही हैं एक बार फिर से वापस आने के लिए। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

Late night grooves में let me wish you all a warm welcome. Good evening, my dear listeners. कैसे हैं आप? नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. Really hope बिल्कुल ठीक ठाक है आप. So बिना देर किए हुए चलिए इस म्यूजिकल कारवां को शुरू करते हैं. Till midnight.

यस, वंस अगेन बॉलीवुड गीतों के साथ हमारी थोड़ी सी बकबक, हमारी थोड़ी सी मीठी मीठी बातें आपके दिल को सहलाने के लिए। वैसे बॉलीवुड के गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये तो आप ही मानते हो, ये हमारी जिंदगी के वो खूबसूरत पन्ने होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। कभी कोई मेलोडी हमें पहली मोहब्बत की याद दिलाती है, कभी बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब रेडियो के सामने बैठकर हम अपने पसंदीदा गाने सुना करते थे। किसी गीत में खुशी छुपी होती है, किसी में दर्द, किसी में इंतजार और किसी में जिंदगी को खुलकर जीने का जज्बा। बॉलीवुड म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर सुर दिल से कोई ना कोई बात जरूर करता है। तो आज की इस महफिल में बस अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल को हल्का कीजिए और मेलोडीज को अपनी रूह तक

ही है वक्त गुजरता रहता है, लोग बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, बट कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते। एक पुराना बॉलीवुड सॉन्ग जैसे ही बजता है, आह, हम अचानक उसी दौर में लौट आते हैं जहां वो गीत पहली बार सुना था। किसी गाने के साथ किसी दोस्त की याद जुड़ी होती है, किसी मेलेडी के साथ पहली मोहब्बत और किसी धुन के साथ माँ के घर की वो शाम। म्यूजिक के पास यादों को संभाल कर रखने का एक अनोखा हुनर है, इसलिए आज के इन सुरों को सिर्फ सुनिएगा मत, महसूस कीजिए, क्योंकि हर मेलेडी अपनी अंदर एक कहानी लेकर चलती है।

क्या बात है, गाने हो तो ऐसे। कभी कभी जिंदगी में बस एक अच्छी सी मेलोडी, एक कप चाय और कुछ पल अपने लिए काफी हो जाते हैं, है ना। बॉलीवुड सॉन्ग्स वैसे उनमें वो जादू है जो थके हुए दिल को भी मुस्कुराना सिखा देता है। जब मधुर आवाज, खूबसूरत लिरिक्स और दिल को छू लेने वाली कंपोजिशन एक साथ मिलती है तो एक ऐसी दुनिया बन जाती है जहां कुछ देर के लिए हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस म्यूजिकल महफिल में अपने आप अपने दिल को आजाद छोड़ दीजिए और इन सुरों के साथ सफर कीजिए, एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक खूबसूरत मेलोडी आपका इंतजार कर रही है।

खुद को अगर आवाज देनी हो तो शायद वो बॉलीवुड के गीतों की आवाज होगी। कभी एक नजर की मोहब्बत, कभी बिछड़ने का दर्द, कभी मिलने की खुशी और कभी चुपके चुपके दिल की बात कह देने का अंदाज। हिंदी सिनेमा ने हर एहसास को गीतों में पिरोया है, इसी वजह से बॉलीवुड सॉन्ग्स हमारे दिल के इतने करीब है। जब कोई रोमांटिक मेलोडी बजती है तो चाहे हम कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, दिल थोड़ा सा फिल्मी जरूर हो जाता है। तो आइए मोहब्बत के उन्हीं खूबसूरत सुरों में खो जाते हैं और महसूस करते हैं कि म्यूजिक और लव का रिश्ता कितना गहरा है।

बॉलीवुड म्यूजिक की दुनिया की सबसे खास बात क्या है? Do you know? आपका मूड चाहे जो भी हो, एक गाना आपका इंतजार कर रहा होता है। खुशी है तो सेलिब्रेशन सॉन्ग, दिल उदास हो तो सोलफुल मेलोडी, प्यार है तो रोमांटिक नंबर। दोस्तों के साथ

बजती है तो इनर्जेटिक ट्रैक और बस सुकून चाहिए तो कोई पुरानी एवरग्रीन धुन। म्यूजिक हमारे इमोशंस को समझाता है बिना हमसे कोई सवाल किए। That's why, जब जिंदगी कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाए तो थोड़ा रुक जाइए, अपना फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग प्ले कीजिए और देखिए कि कैसे कुछ ही मिनट में दिल का मौसम बदल जाता है।

यू सो मच. हाँ वंस अगेन नीतू आपके साथ इट्स योर लेट नाइट ग्रुप्स सगन आओ में स्वागत है आपका. वैसे पुराने बॉलीवुड गीतों की बात ही कुछ और है. उनकी मेलोडीज में एक सादगी थी, लिरिक्स में गहराई और आवाज

आंसू में एक ऐसी मिठास जो सीधा दिल को छू लेती। आज भी जब वो एवरग्रीन सॉन्ग्स रेडियो पर बजते हैं तो लगता है जैसे वक्त ने कुछ पल के लिए अपनी रफ्तार रोक ली हो। हम उन्हीं यादों में चले जाते हैं जहां ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा था, शाम को रेडियो बजता था और परिवार एक साथ बैठकर गाने सुनते थे। ये गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं, हमारी कल्चरल मेमोरी का हिस्सा है। तो चलिए आज उन्हीं यादगार मेलोडीज के साथ कुछ पुराने लेकिन बेहद खूबसूरत पल दोबारा जीते हैं।

कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधा दिल में उतर जाती हैं। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स ने अपनी आवाजों से न जाने कितने जेनरेशंस को मोहब्बत करना, खुश होना, रोना और सपने देखना सिखाया है। एक सिंगर की आवाज में कभी माँ की ममता महसूस होती है, कभी लवर की बेचैनी, कभी दोस्त की शरारत और कभी तन्हा दिल की खामोशी। इसीलिए एक अच्छा गाना सुनना एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, दुनिया को कुछ देर के लिए म्यूट कर दीजिए और अपने फेवरेट सिंगर्स की आवाजों को अपने दिल से गुजरने दीजिए।

लैंग्वेज को बहुत खूबसूरती से अपनाया है। एक मेलोडी हमें बिना कुछ कहे खुश कर सकती है, आंसू ला सकती है या किसी पुरानी याद में ले जा भी सकती है। शायद इसलिए हम गाने सुनते नहीं, गाने जीते।

वाह क्या बात है म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती सुर की अपनी एक भाषा होती है और ये भाषा दुनिया के हर इंसान के दिल तक पहुंच सकती है बॉलीवुड मेलोडीज ने इसे यूनिवर्सल

रेडियो और बॉलीवुड म्यूजिक का रिश्ता भी कमाल का है दोस्तों। कितने ही जेनरेशंस ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पसंदीदा सिंगर्स और गानों को सबसे पहले रेडियो के जरिए सुना। सुबह की चाय हो, शाम का वक्त या रात की तन्हा खामोशी, रेडियो पर बजता है एक खूबसूरत बॉलीवुड सॉन्ग माहौल को ही बदल देता है। आज टेक्नोलॉजी ने म्यूजिक को हमारी उंगलियों तक जरूर पहुंचा दिया है, बट रेडियो की वो वॉर्म्थ और सरप्राइज अब भी अपनी जगह रखती है, क्योंकि रेडियो पर अगला गाना क्या होगा, कब बजेगा और कौन सी याद लेकर आएगा, ये एक्साइटमेंट ही तो रेडियो की असली मैजिक है।

बॉलीवुड सॉन्ग के पीछे कहानी होती है, कभी वो कहानी फिल्म के कैरेक्टर्स की होती है, कभी लिरिसिस्ट के एहसासों की और कभी हमारी अपनी जिंदगी की। एक ही गाना 100 लोग सुन सकते हैं, लेकिन हर इंसान उसमें अपनी अलग कहानी देख सकता है, राइट? किसी के लिए वो लव सॉन्ग है, किसी के लिए हार्ट ब्रेक, किसी के लिए नॉस्टैल्जिया और किसी के लिए बस एक ब्यूटीफुल मेलोडी। शायद इसी को कहते हैं म्यूजिक का मैजिक, एक ही सुर लेकिन हजारों इमोशंस। तो आज जो भी गाना आप सुनेंगे, हो सकता है आपको अपनी जिंदगी का कोई खूबसूरत हिस्सा नजर आ जाए।

बीते थर्ड आवर में भी हम पहुंच आए हैं। थैंक यू सो मच। वैसे जिंदगी भी एक म्यूजिकल जर्नी की तरह है, कभी हाई नोट्स, कभी लो नोट्स, कभी रिदम तेज होती है तो कभी बिल्कुल धीमी। बॉलीवुड सॉन्ग्स ने जिंदगी के हर रंग को अपनी मेलोडीज में जगह दी है, इसलिए जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमें लगता है जैसे कोई हमारी कहानी हमसे ही कह रहा हो। तो आज की इस जर्नी में हम टेंशन, स्ट्रेस और रूटीन को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ देते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, दिल खोल लीजिए और मेलोडीज के इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथ चलिए।

कभी आपने महसूस किया है कि जब दिल बहुत कुछ कहना चाहता है तब हमारे पास लफ्ज नहीं होते। ऐसे वक्त में एक मेलोडी हमारी तरफ से सब कुछ कह देती है। That's why म्यूजिक को दिल की आवाज कहा जाता है। बॉलीवुड के वैसे ऐसे गीत हैं जो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हमारे इमोशंस को समझ लेते हैं। बीट रात की खामोशी में कोई सोलफुल गाना सुनना, बारिश में कोई रोमांटिक मेलोडी सुनना या सफर के दौरान फेवरेट ट्रैक सुनना, हर एक्सपीरियंस को म्यूजिक और भी खूबसूरत बना देता है। तो आज अपनी खामोशी को भी सुरों का साथ दीजिए।

सबकी म्यूजिकल जर्नी कब कहीं ना कहीं बचपन से शुरू होती है। घर में बजते गाने, पेरेंट्स के फेवरेट सॉन्ग, स्कूल फंक्शंस, फैमिली गैदरिंग्स और रेडियो पर बजती मेलोडीज, धीरे धीरे ये सब हमारी मेमोरीज का हिस्सा बन जाती है। फिर वक्त बढ़ता है, हम बड़े हो जाते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, नए सिंगर्स आते हैं, लेकिन पुरानी मेलोडीज की जगह दिल में वही रहती है। ये जेनरेशंस को कनेक्ट करता है, दादा दादी से लेकर ग्रैंड चिल्ड्रन तक एक अच्छा गाना सबको एक साथ गा सकता है।

कभी खुशी कभी गम, दैट्स लाइफ। कभी कभी मूड खराब होने की वजह भी पता नहीं होती, बस दिल थोड़ा हैवी सा हो जाता है और फिर अचानक रेडियो पर एक फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग बजता है और जैसे दिल के अंदर किसी ने लाइट को ऑन कर दी हो। म्यूजिक का यही तो मैजिक है दोस्त, ये हमारे सराउंडिंग्स को नहीं हमारे अंदर के इमोशंस को चेंज करता है। एक एनर्जेटिक सॉन्ग हमें डांस करने पर मजबूर कर सकता है और एक सॉफ्ट मेलोडी हमें सुकून दे सकती है। तो अगर आज आपका मूड थोड़ा ऑफ है तो फिक्र मत कीजिए, हम है ना रेडियो मस्ती है ना, और हमारे पास है खूबसूरत बॉलीवुड मेलोडीज।

जिंदगी में खूबसूरत पल हमेशा बड़े मौकों से नहीं बनते। कभी कभी एक कप चाय, खिड़की के बाहर की हवा, किसी अपने की याद और बैकग्राउंड में बजता एक बॉलीवुड सॉन्ग भी एक ऑर्डिनरी इवनिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है।

म्यूजिक हमें याद दिलाता है कि खुशी सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में भी छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो बस आप दिल खोल कर बॉलीवुड मेलोडीज का मजा लेते रहें, सुरों को हवा में घुलने दीजिए, यादों को दिल में जगने दें और हर गाने के साथ जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत महसूस करें, क्योंकि कुछ मेलोडीज सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जी जाती है और हमेशा के लिए दिल में बसा ली जाती है। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते